0: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।
1: It's 9 AM. This time check is brought to you by
2: Bank Al Habib, रिश्ता भरोसे का।
3: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-33-8559।
4: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अल हबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अल हबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।

कालम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाइ 03201800003
1: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम

0: तव्हांखे तव्हांजे क्लास ताईं वठी वञा। हीअ आहे तव्हांजी क्लास।
1: कॾहिं ईअं थींदो आहे त ॿारनि जे सिखण समझण जी सलाहियत महदूद लॻंदी आहे।
2: अस्सलाम अलैकुम बारो।
1: मसालो तालीम न पर खुराक में ज़रूरी ग़िज़ा जी घटिताई हूंदी आहे।
2: तव्हांजो छा नालो आहे?
0: मैडम, तव्हां स्कूल ऐं ॿारनि जो हाल ॾिसी परेशान थी वियो। पढ़ाई में बिल्कुलु हुननि जी दिलि न आहे लॻंदी, बार बार फेल थींदा आहिनि।
2: तव्हां पंहिंजो लंच बॉक्स ॾेखारियो। हिते कंहिंखे हिननि जो ख़्याल ई न आहे आयो। ॿारो, अॼु खां असां हिकु नओं सिलसिलो शुरू कंदासीं। असां सिखंदासीं त सिहतमंद खाधो कहिड़ो हूंदो आहे। छा ठाहियो अथई अहमद?
3: सुबह की पहली किरण।
1: मुतवाज़िन ग़िज़ा महांगी नाहे हूंदी, बहितरीन ग़िज़ा ॿारनि जो बहितरीन मुस्तक़बिल। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
4: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
5: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूरु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर

0: कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 03011 96 851।
1: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: किसानों के

0: मां खाधो गरम करे थी वठा।
1: बुध थकल थकल पी लगे घणी खैरियत आ?
0: तवा जो पुट सुमई न थो पूरी रात, मां त खीर प्यारे प्यारे थकी थी पवा।
2: मेरी थकन को भी तेरे
1: तू हाल वे मां छा तू हाल तू

0: हे वट एड़ी शयूं खांदी कर सेहत ठीक रहंदी
1: तवा खाओ
0: ना ना तू खा तू ना खानी तो मां के खाइंदम
2: तेरा ख्याल मेरी जिंदगी का सबसे
3: खीर पियारण वाली माओ जी बेहतरीन गिजा माओ ए बार इन्ही जो हक है ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफा पेश कर
4: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं तो भाई साहब क्या समझे
5: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे
6: अस्सलाम वालेकुम अदा
7: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा
8: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
6: मुझे दुकान जी बे डरंदी
7: हां दा कारोबारी इश्तेहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
8: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
7: रابطे लाए हाकिम अली जिसकाणी
9: 03013992836

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Michael Habib, Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: चीनी बार्डर बिनी मुल्कन जा झंडा ए गुल खणी सदर ट्रंप जी आजा कई चीनी सदर शे जिन पंग चेव आहे त चीनी ए अमेरिका ब वडी ताकतू आहन आलमी अमन ए मुआशी तरक्की के बरकरार रखण ला बिनी मुल्कन जे कयल जिम्मेवारी आहे इख़्तिलाफ़नि बावजूदि ॿिन्ही मुल्कनि खे गॾियल एहतराम हिक ॿिए जे पुरमन सलामती वारनि असूलनि ते हलणो पवंदो. दुनिया हिन वक़्तु ईरान तकरार ऐं आलमी सप्लाई चीन जे संगीन बहराननि मां गुज़री रही आहे. समूरी दुनिया जूं नज़रूं हिन वक़्तु बीजिंग में थींदड़ ॻाल्हियुनि ते आहिनि. समूरनि आलमी बहराननि जो हल सिर्फ़ सफ़ारतकारी ॻाल्हियुनि में आहे. अमरीकी सदर ट्रंप चयो आहे त हू हमेशह यकीन रखंदो आहे त चीन ऐं अमरीका विच में गॾियल मफ़ाद इख़्तिलाफ़नि खां वधीक अहम आहिनि. चीन ऐं अमरीका जा मुस्तहकम लाॻापा दुनिया जे मफ़ाद में आहिनि. तारीख़ी सरबराही मुलाक़ात जो सभ खां बुनियादी ऐं मुख्य मक़सदु ॿ तरफ़ो वापारु आहे.

चीनी पाकिस्तान के ईरान अमेरिका जंग के खात्मे लिए टाकरे जो कोशिशों तेज करने की अपील चीनी पर तो परडेही वजीर पाकिस्तान अपने हुरमत के खोलन बाबत मसला हल करने में पैं किरदार अदा करे उम्मीद है पाकिस्तान एतमाद से पैं कोशिशों जारी रख खिते में किरदार अदा कह गालन में अकबराई थी रही है अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस जो सदर ट्रंप पारा ईरान की न्यू तजवीजों रद्द करने बाद बयान नायब सदर जेडी वेंस तो गाल में एतरी अकबराई थिए थी या न जी सदर ट्रंप की रेडलाइन के मुतमिन कर सकते सदर ट्रंप की रेडलाइन इंतहाई सादी है वो चाहे तो अड़ा हिफाजती कदम खड़ू जैसा ईरान कदम भी एटम बम न ठाए सके परडेही वजीर अब्बास इराग़ची अमरीकी धमाके वालों रवैयो अमरीकी धमकी

ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3883-855।

0: चेहरो बेजान डल लगे थो आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो जीए होजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तेहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 0301-399-2836
5: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GA FM 94

0: 10:15 AM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद अम्बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनिया जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो साइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 0301-9196-851
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यू

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: नमूने न संभालियो पियो त बिनी मुल्कनि जे लाॻापा टकराव तरफ़ वधी सघनि था. सदर ट्रंप चीनी सदर सां मुलाकात खे कामयाब करार ॾींदे चयो आहे त बीजिंग ऐं वॉशिंगटन जे लाॻापा तारीख़ी बुलंदनि तरफ़ वञण वारा आहिनि. चीनी ऐं अमरीकी सदरनि में मुलाकात तक़रीबन 2 कलाक जारी रही.

ईरान खिलाफ़ साजिश करण जो एहतसाब कयो वेंदो। दुश्मन सां गॾु बीठड़नि खे पंहिंजे अमल जो जवाबु ॾियणो पवंदो। ईरानी पढ़ी वज़ीर अब्बास राख़्ती चयो आहे त ईरान अवाम ख़िलाफ़ बेवकूफ़ी ते बदिलजो आहे। ईरान खिलाफ़ दुश्मन लाइ इसराइल सां गठजोड़ माफ़ी जोॻो नाहे।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में ॾे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस,
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।
1: आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टिल 1 पीएम आपका और मेरा साथ रहता है और ये खूबसूरती बड़ा खूबसूरत सा जो कि आज भी जारी हो सारी रहेगा पूरे पूरे एक बजे तक। और प्रोग्राम में अगर हम बात करते हैं सबसे पहले वक्त की, तो वक्त हुआ जाता है 11:15 जो कि पाकिस्तान का मियारी वक्त है। तमाम तो लोगों की घड़ियों में बज रहा है और इसके अलावा

इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में, ट्रक में, रिक्शा में, कार में, बाइक पे, जिस पे भी जहाँ भी जा रहे हैं, आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी. और इसके अलावा जी वो लोग जो लोग की सालगिरह हैं उनको कहेंगे मनी मनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू यू. उसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून. जो लोग लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बेटर, कुछ बड़ा, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो उनको जाएंगी मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस. आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें. आमीन सुम्मा आमीन.

ओके जी, प्रोग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जी तीन तरीके कार से. आप लोग सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, एस के आर टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, उसको सेंड कीजिए 888 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है जो कि है www.facebook.com/fm88gasakhar. इसके ऊपर आने के बाद सिंपली आप सर्च करें fm88gasakhar. इसके ऊपर आने के बाद आपको मिलती है एक अदद पोस्ट जो कि होती है जिंदगी गुलजार है कि उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं. साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. इसके ऊपर कॉल करेंगे. दो सेगमेंट्स में आप लोगों के लाइव कॉल्स को रिसीव किया जाता है. दो कौन से सेगमेंट हैं वो आपको मैं बताऊंगी. अच्छा, काफी दिन से नहीं बल्कि तीन वीक से हमारा जो सेगमेंट था हरा भरा पाकिस्तान वो नहीं हो रहा था. तो आज हम हरा भरा पाकिस्तान भी कर रहे होंगे 12 बजे के बाद एग्जैक्टली लाइव. ठीक है जी, तो आज हमारे पास एक और एक अदद एडिशनल सेगमेंट दैट इज हरा भरा पाकिस्तान. ठीक है.

इसी के साथ हम एक और गाना प्ले करेंगे एंड द सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल. इसको सुनेंगे, एंजॉय करेंगे. छोटा सा कमर्शियल ब्रेक होगा मेरे पास, सो स्टे ट्यून्ड. जिंदगी गुलजार है फ्रॉम योर फेवरेट रेडियो स्टेशन, चाहिए एफएम रेडियो नेटवर्क सिंध की आवाज.

0: एलोवेरा फैन
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
3: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे।
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न? अदा
6: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बे डरंदी?
5: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 03013992836।
8: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज जीए FM 94।

0: का, ठीक है जी, तो ये आप लोग करेंगे और साथ साथ हम कमेंट्स और मैसेजेस को भी इंक्लूड करते जाते हैं, बहुत सारे आप लोगों के मुझे रिसीव होते जा रहे हैं. सो जी हमें मैसेज कर दिया है अब्दुल सत्तार ने. अब्दुल सत्तार कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसी हो? जी मैं बहुत अच्छी हूँ. और कहते हैं, अल्लाह ताला आपको खुश और सेहतमंद रखे, शो बहुत अच्छा है आपका, कसम. अब्दुल सत्तार कहते हैं. अच्छा, जहीर अब्बास परवो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम मोरो से. जहीर वेलकम टू द शो. इस्मा किशोर कहते हैं, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल. इस्मा किशोर कैसे, ठीक ठाक? अब्दुल सत्तार कहते हैं, सिस्टर हमें मास्टर मंजूर का कोई भी सॉन्ग सुना दें प्लीज. और इसके साथ साथ मोहम्मद हफीजुर रहमान हमें सुन रहे हैं रेहाना खान भक्कर से. चल नहीं जी, आईडी कुछ और होती है, अंदर से कोई और निकलता है. बट नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट नहीं सॉरी, फर्स्ट. क्या हो गया मुझे? फर्स्ट कॉलर ऑन द कॉल, चेक करेंगे कॉलर कहाँ से जी. हेलो,
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम.
0: वालेकुम अस्सलाम सागर भाई, कैसे, ठीक ठाक?
1: खैरियत खैरियत कर रहा
0: हूँ. ओके, गाना लेकर आए अच्छा सा?
1: जी जी मैं गाना तो लेके आया.
0: सुना दे फिर.
1: मैं कपड़े बदल गए क्यों कहा, मैं कपड़े बदल गए क्यों कहा, और बाल बनाओ किसके लिए, वो शर्त तो शहर छोड़ गया. मैं बाहर किसके लिए, मैं कपड़े बदल कर जाऊंगा, जिस धूप के दिल में थे वो धूप साथ गई, जिस रूप के दिल में संदक थे वो धूप से साथ गई. निखाली तंदिरों में लाते मैं शम्मा जलाऊं किसके लिए, नए कपड़े बदल कर जाऊंगा.
0: ओके वेरी नाइस. और कुछ कहेंगे, किसी को डेडिकेट करना है?
1: नहीं मेरे बात जो साथ नहीं है, डेडिकेट किसको करूं?
0: दो साथ नहीं है. मैं कपड़े बदल कर जाऊं कहां, मैं बाल बनाऊं किसके लिए. अच्छा, कपड़े बदलने के बारे में भी हम तब सोचते हैं आजकल जब लाइट हो और कपड़े प्रेस हो सके. नहीं तो उन्हीं कपड़ों पे बाहर जाना पड़ता है.
1: मैं कहां जाऊं कपड़े बदल के भी, कहां जाऊं?
0: अच्छा, कपड़े बदल के भी कहां जाएं. चलें फिर सुनाते हैं आपको.
1: थैंक यू मैम.
0: ओके अल्लाह हाफिज.
2: कुछ ना सुनो तो बेहतर.
0: आजकल गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है, बिजली होती नहीं है,
2: तो
0: कपड़े बदलने का दिल तो करता है बार बार, लेकिन प्रेस कैसे करें? एक तो दिल भी नहीं करता, दूसरा लाइट भी नहीं होती. एग्री करेंगे मेरी बात से? एग्री करेंगे तो कमेंट करके बताएं.

0: कमेंट्स को चेक करते हैं जी, और कॉलर भी मेरे से लाइन पे मौजूद है। हेलो,
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: अच्छा, अभी अभी आपके कमेंट पे मेरी नजर पड़ी है और आपने लिखा है कि कॉल मिला रहा हूँ और देखे कॉल आपकी लग गई है, ये क्या इत्तफाक होता है अक्सर?
1: हो सकता है कोई इत्तफाक हो या आप जानबूझ के करें?
0: नहीं, जानबूझ के मैं क्यों करूंगी, मैं थोड़ी आपके पास मौजूद हूँ, मैं थोड़ी कॉल मिला रही हूँ। है ना,
1: बोलने में अच्छा लगता है।
0: है ना, बोलने में अच्छा लगता है। नहीं, लॉजिक भी है वैसे इस बात में, ये वाकई इत्तफाक है। अच्छा, मुझे बताएं कि कौन सा गाना लेकर आए?
1: बस सुनाता हूँ, आप समझ जाएंगे।
0: ओके, सुना दें।
1: कल जब देखा मैंने चांद झरोखे में उसको किया

0: हाँ तो
1: वाह वाह, वेरी नाइस. और बंदे को जब एप्रिसिएशन मिलती है ना, तो फिर इम्प्रूवमेंट आती है वो चीज़ करने में, नहीं
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना? तो काफी अच्छा गाया आपने, वेरी वेल डन.
0: थैंक यू,
1: और कुछ कहना है?
0: बस थैंक यू, अल्लाह हाफिज.
1: अल्लाह हाफिज, थैंक यू. अच्छा, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के पास लाइनअप है. जो इस माँ किशोर ने हमें गाना सुना, उस गाने के साथ वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. स्टे ट्यून्ड.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिनट ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
3: किसानों के आलम

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: अपना शहर अपना घर महराबपुर और महराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजी रुखसार. आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है और ब्यूटीफुल सॉन्ग सॉन्ग सुनेंगे, आगे चलेंगे.

0: ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार, एक बार फिर से गाने के साथ वापस आ चुके हैं जी. और हमारे पास ऑलमोस्ट 5 मिनट्स हैं, सो गाना हमारा जो है ऑलमोस्ट पूरा खत्म होने की जानिब. और नेक्स्ट कॉलर में लेने जा रही हूँ, लाइन पे चेक करेंगे कॉलर कहाँ से. हेलो,
1: अस्सलामुअलैकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कॉलर कहाँ से.
1: एजीएम बलोच मिर्पुर खान.
0: अरे एजीएम बलोच भाई, किधर से आ रहे हैं इतने दिनों बाद.
1: आप लोग काली नहीं अटेंड करते हो, मेरी डेली कॉल लगती है, अटेंड नहीं होती.
0: अरे नहीं, आज के बाद हम आपकी कॉल अटेंड किया करेंगे.
1: नहीं, वजह क्या, आप देखिए कॉल नहीं लगे तो वो एक बात है, लेकिन जब कॉल लग जाती है तो आपका राइट बन जाएगी हमारी कॉल को.
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है. और पॉसिबल है कि जब आपकी कॉल लगती हो या तो उस वक्त गाना चल रहा होता होगा या ब्रेक होता होगा या मैं बात कर रही होती होंगी, तो ऐसे हो जाता है कि जब लिसनर्स कॉल कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग इस तरह लग नहीं पाती है लगने के बाद भी. तो ये वाकई एक जो है ना इत्तेफाक है.
1: अच्छा, आपकी इस बात को मैं डिसएग्री करता हूँ. जो आपने इससे पहले कहा था कि मैं लाइव तो हो रहा है और कपड़े बदल के जाऊंगा, सागर भाई को मिल रहा हूँ, लेकिन हम कोई देहात या जंगल में या गांव में नहीं रहते हैं, शहरों में रहते हैं. और ये नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट ने कोई ऐसा काम किया है कि अभी लाइटों में मैं रहूँ. नहीं, ये गलत बात है. जो रियलिटी है आप उसको माने, ठीक है ना. और ये इस किस्म की डिस्कशन तो नहीं होनी चाहिए वैसे.
0: तो भाई मेरे क्या जरूरत है, वो सिर्फ गाना है. वो तो हमें भी पता है कि लाइट सब है, हम शहर में रहते
1: लेकिन
0: हैं.
1: आपने और... कि वो आपने डिटेल दी ना, तो उस बात पर मैं बात कर रहा हूँ.
0: अच्छा, मैंने जो कहा कि लाइट नहीं होती,
1: आपने
0: आपके पास होती है.
1: बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आपने लुकमा दिया है कि भाई वाकई लाइट नहीं होती है तो नए कपड़े पहन के जाऊँ काम
0: है. तो वो तो लॉजिक है ना, उसमें क्या शक बात है. आजकल लोड शेडिंग देख ले कितनी ज्यादा हो रही है, तो मैंने उस बात पे कहा है. अब ऐसा थोड़ी है कि मैं कच्चे के इलाके से आती हूँ और वहाँ पे लाइट नहीं होती. तो ये बात है ना, तो इस बात पे मैंने कहा था. तो आपने शायद गलत समझा होगा कि मैं इस तरह कहना चाह रही हूँ कि हमारे पास तो लाइट नहीं होती, हम तो गाँव में रहते हैं. नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है. लोड शेडिंग तो शहरों में बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये बात है. अच्छा, गाना सुनाना था वैसे आपने.
1: नहीं, गाना आपने जो ये अभी गाना चलाया ना, वारिस
0: में था. हाँ, अच्छा नहीं था
1: ये. मैं इसको लाइक करता था, क्यों, मैं हमारा एक दोस्त है अमेरिकन, वो भी इसको बहुत पसंद करता था, तो वो चला गया अमेरिका. तो उसने मुझे कहा था यार ये जो इसका गाना है ना वो जरूर
0: और कुछ कहना चाहेंगे.
1: तमाम सुनने लोगों के अपना ख्याल रखें और गर्मी से बचे बस.
0: ओके जी, थैंक यू सो मच. आप भी गर्मी से बच के रहें. अल्लाह हाफिज, थैंक यू. स्वीट कॉलर. और ब्यूटीफुल सॉन्ग.

0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
3: अरबी मर्दों ने गुजरात राज्य तर्दीद कर चली. परिवहन वजारत मौजूद इसराइल से लगापा इब्राहिमी माहदे तहत शफाफ ऐलानिया हैं. जिनमें काब गुजी मुलाकात हैं राबता शामिल ना हैं. ईरान जंग दौरान इसराइली वजीर आजम गडल अरबी मर्दों जो दौरो ना हैं कयो. ईरान खिलाफ़ साजिश कंदड़ जो एहतसाब कयो वेंदो. दुश्मन सां गॾु बीहंदड़नि खे पंहिंजे अमल जो जवाब ॾियणो पवंदो. ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराकज़ी चयो आहे त ईरानी अवाम खिलाफ़ बीहण बेवकूफ़ी ते बदिलजो आहे. ईरान खिलाफ़ दुश्मनी लाइ इसराइल सां गठजोड़ माफ़ी जो कोन आहे. कोकीन क्वीन पिंकी जा मंशात केस में गिरफ़्तारी बाद छिरकाईंदड़ इंकशाफ़. पिंकी जी गैंग में पंज मर्द ऐं हिकु औरत बि शामिल. ज़रियनि मूजिब अनमोल उर्फ पिंकी मंशा जो समूरो कारोबार ऑनलाइन हलाईंदी हुई. हिकु ग्राम कोकीन जा 15,000 रुपया वठंदी हुई. नवां ख़रीदारनि खे मंशा राइडर्स बदिरां कंहिं मखसूस जॻह ते रखी इतार ॾिनो वेंदो हो. जंहिं बाद ख़रीदार ॿुधायल जॻह तां मंशात खणंदो हो. अनमोल उर्फ पिंकीअ ख़िलाफ़ पंजाब में बि जांच शुरू. CCD अनमोल उर्फ पिंकीअ जे मुड़ुसु रिटायर्ड इंस्पेक्टर खे जांच लाइ तलब करे वरितो. पंजाब पुलिस जे ज़रियनि मूजिबि पिंकीअ वारे मामले जी जांच CCD कर रही आहे. सकरन वेझो भाणे जथां मामो क़तल. घोट जतो मक्सीअ में जवाबदार मिस्री जमाली पंहिंजे मामे शमस जमाली खे क़तल कयो. पंहिंजे अकलबर सां घोट चौंगा में कलोड़ा बिरादरी जे बिंदड़नि में मामूली ॻाल्हि तां झेड़ो. सलीमुल्ला कलोड़ो मारिजी वियो. ॿी दुर जा 3 ॼणा ज़ख़्मी थिया. नगर पालकर में सिंधी हारी तहरीक ऐं अवामी तहरीक पारां वधंदड़ महांगाई ख़िलाफ़ एजाजी रैली. अवामी हाउस खे रिलीफ फराहम करण जो मुतालबो. मदेजी में जलबाणी बिरादरी जो एहतजाज. पुलिस ते नौजवान खे खंभे गुम करण जो इल्ज़ाम. मुज़ाहिरनि मूजिबि पुलिस नौजवान वली खान जलबाणी खे खंभे गुम कयो आहे. आला अख़्तियारी नोटिस वठी नौजवान खे आज़ाद कराइनि. ॿी सूरत में एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो. ऐं नाज़रीन, मीरपुर भठोरो वेझो झोक शरीफ़ ऐं समे ॻोठनि खे पीअण जो पाणी फराहम कंदड़ गंज बहर कैनाल में पाणी जी खोट पैदा थी वई. गंज बहर कैनाल में पाणी जी खोट सां आबादगार सारनि जो फसल बि न पोखी सघिया. पीअण जे पाणी जी बि खोट पैदा थी वई. औरतनि ऐं ॿार परे परे वारनि इलाइक़नि मां पाणी भरण ते मजबूर.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
4: उम्मीद के दिए जलते हैं.
5: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन. मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर. शानदार तालीमी इमारत. प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन. एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार. मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला. सरसब्ज बागीचा. बेहतरीन फर्नीचर. शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब्स. ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत. केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा. एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज. खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले. तहरीर, तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले. स्टडी टूर्स. अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें. मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम. 03000002734. निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर. 03013865453.

0: ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस: रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-33-8569।
1: छा अहां जो चेहरो बेजान ऐं डल लॻे थो? हाणे वक़्तु आहे चमकण जो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सां कुदरती जुज़न सां तयार कयल, जेका ॾे कुदरती निखार, साफ़, नरम ऐं रोशन चेहरो। पहिरें इस्तेमाल में फ़र्क महसूस करियो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, तव्हां बि चमकायो पंहिंजो चेहरो।

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम महरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03-20-18-00-003
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de chaar guna brightness, chamak aise diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: What a beautiful song. और ये song ना मैंने आते साथ line up किया था. मैंने सोचा ये मैं अब play करूँगी, ये मैं अब play करूँगी. लेकिन ऐसे करते करते ना हम अगले घंटे में पहुँच गए.
1: बन गया के इतने शक्लां ने सोनिया पर दिल सारे fake. आदत पै गई
0: पैसे. इस गाने की हर लाइन कितनी एक्यूरेट है.
1: दिला दी सौदेबाजी बन गया के इतने शक्लां ने सोनी
0: है ना
1: दिल सारे फेक.
0: इसी बात पे मैसेजेस की तरफ चलते हैं. सलाम, कैसी हो रुखसार बाजी? दुआ करो कि मैं 2029 का टॉपर बनूं पब्लिक सर्विस कमीशन के CSSP SP एग्जाम का. हम आपको इनवाइट करेंगे, क्या आप आएंगी? ऑब्वियसली मैं जरूर आऊंगी और इंशाल्लाह आप ये एग्जाम पास कर जाएं.
1: जो रख देने बुलिया ते झूठे हासे.
0: दिल लगा के मेहनत करें, दिल लगा के पढ़ें. कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा आपको, तब जाके आप ये अचीवमेंट हासिल कर पाएंगे. क्योंकि जब तक इंसान अपने कंफर्ट जोन में रहता है ना, तब तक वो चीज हासिल नहीं कर पाता जिसका उसे जुनून होता है. जुनून को पाने के लिए या किसी चीज को हासिल करने के लिए, किसी जगह पे पहुंचने के लिए, किसी पॉइंट पे आके रुकने के लिए, किसी मंजिल पे जाने के लिए, हमेशा इंसान को अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है. क्योंकि जब तक हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं ना, हम कभी भी किसी भी चीज को अचीव नहीं कर पाते. बींग हार्ड वर्किंग.

0: पर
1: अच्छा गाना चेंज करें क्या? गाना चेंज करते हैं जी साथ साथ. एंड गाना मेरे पास होगा एक अच्छा वाला. सो एक अच्छा वाला गाना हम सुनेंगे. और ये जो मैंने अच्छा वाला गाना लाइन अप किया हुआ था, ये क्यों इधर से उधर हो चुका है, लेकिन खैर हम प्ले करेंगे एक और सॉन्ग. एंड द सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल बाय आसिम अज़हर. सुनते हैं, इंजॉय करते हैं, आगे चलते हैं. स्टे ट्यून्ड.

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: किसाननि खे आलमी दिन पर

0: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहिरें इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो जीए हुजे हीरो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94

वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार, आपका और मेरा साथ पूरे पूरे एक बजे तक का. और

लास्ट रंग में हम वापस आ चुके हैं जी. और ये जो मोमेंट होता है ये इतनी जल्दी गुजरता है कि हम इसको रोक भी नहीं सकते और हम इसको कुछ बोल भी नहीं सकते. अच्छा कॉलर्स, हम मैं कोशिश करूंगी कि लास्ट लकी कॉलर्स ले लूँ. 03000113488 इसके ऊपर आप लोगों की कॉल्स को मैं रिसीव करने की कोशिश करूंगी पूरी पूरी, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स हमने लेनी थी और बहुत सारी कॉल्स हम नहीं ले पाए हैं. हमने आज बहुत कम कॉल्स ली हैं और गाना भी मौजूद है मेरे पास.

सहकार में फ़ायदो ऐं छिकताण सां नुक़सान थींदो आहे। चीनी सदर शी जिनपिंग अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खे मुख़ालिफ़ बदिरां भाईवार थियण जो मशवरो ॾेई छॾियो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी चीनी सदर शी जिनपिंग सां मुलाक़ात। शी जिनपिंग सदर ट्रंप खे ताइवान बाबति ख़बरदार कंदे चयो त मामले खे दुरुस्त नमूने न संभालियो वियो त लाॻापा टकराव तरफ़ वधी सघनि था। आलमी बुहरान जो हल रुगो सफ़ारतकारी ऐं ॻाल्हियूं आहिनि। सदर डोनाल्ड ट्रंप चीनी सदर सां मुलाक़ात खे कामयाब करार ॾींदे चयो आहे त बीजिंग ऐं वॉशिंगटन जा लाॻापा तारीख़ी बुलंदियुनि तरफ़ वञण वारा आहिनि। चीनी ऐं अमेरिकी सदरनि में मुलाक़ात तक़रीबन 2 कलाक जारी रही।

इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान सां जंग दौरान गॾियल अरब इमारतुनि जो ॻुझो दौरो कयो हो। परॾेही ख़बर इदारे जी दावा, इसराइली वज़ीर आज़म जो ऑफिस नेतन्याहू जे यूएई जे ॻुझे दौरे जी तसदीक कंदे चयो आहे त नेतन्याहू ईरान ख़िलाफ़ जंग दौरान गॾियल अरब इमारतुनि वियो हो ऐं हुन यूएई जे सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान सां बि मुलाक़ात कई हुई। यूएई इसराइली वज़ीर आज़म जे गॾियल अरब इमारतुनि जे ॻुझे दौरे जी तरदीद करे छॾी। परॾेही वज़ारत मूजिबि इसराइल सां लाॻापा इब्राहिमी मुआहिदे तहत शफ़ाफ़ ऐं ऐलानियल आहिनि, जिन में का बि ॻुझी मुलाक़ात ऐं राब्ता शामिल न आहिनि। ईरान जंग दौरान इसराइली वज़ीर आज़म गॾियल अरब इमारतुनि जो दौरो नाहे कयो। ईरान ख़िलाफ़ साज़िश कंदड़नि जो एहतिसाब कयो वेंदो, दुश्मन सां गॾु बीहंदड़नि खे पंहिंजे अमल जो जवाब ॾियणो पवंदो। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त ईरानी अवाम ख़िलाफ़ बीहण बेवकूफ़ी ते ॿधल जुआ आहे। ईरान ख़िलाफ़ दुश्मनी जे लाइ इसराइल सां गठजोड़ माफ़ीअ जोॻो नाहे।

0: कॉलम में मौजूद आहिनि फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार अॼु कल्ह शहरनि तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
3: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
2: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
3: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

ओके जनाब, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा शानदार। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश इंडी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से, इंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आपके सिद्रा यहाँ पर आप लोगों के साथ साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताते जाएंगे। और जनाब अपने होने का एहसास दिलाते जाएंगे, वो कैसे करेंगे जनाब वो बताते हैं। लेकिन यहाँ पर जरा आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला है उसकी जानिब आ जाते हैं। तो आज के प्रोग्राम में जो मेरा आप लोगों से सवाल होने वाला है वो ये होने वाला है कि आज आप मुझे ये बताइए जरा, हाँ जी, कि गर्मियों में आप लोग भरोसा सबसे ज्यादा किस पर करते हैं। यानी गर्मियों के अंदर वैसे भी कहते हैं ना भरोसा जो है वो किसी पर भी नहीं होता, लेकिन गर्मियों में आप मुझे ये बताएं कि आप भरोसा सबसे ज्यादा किस पर करते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, ज्वाइन होना चाहते हैं, तो किस तरह से ज्वाइन करेंगे जनाब। आप हमें अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जनाब जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है, और जी लाड़काना FM 88.8 अगर आप सर्च करते हैं तो आपको इजीली हमारा पेज मिल जाता है। और वहां पर आप जैसे ही आते हैं तो आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है, जैसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ पोस्ट को जरा शेयर करते जाइए और दोस्तों को मेंशन भी कीजिए ताकि सबको पता चले कि यहां पर प्रोग्राम में आप लोगों को आपकी खूबसूरती के राज बताए जाते हैं। तो बिल्कुल जी, खूबसूरती के राजों को जानेंगे। और यहां पर आप लोगों से मैंने पूछ लिया कि आप मुझे बताएं कि गर्मियों में आप सबसे ज्यादा भरोसा किस पर करते हैं। वैसे तो खूबसूरती के मामले में देखा जाए तो आप लोगों का भरोसा जो ना वो ऐसा है कि आप ये कहते हैं कि गर्मियों का सीजन जब भी आता है तो हम ब्यूटी क्रीमें जो होती हैं, जो कि नाइट क्रीमें कहा जाता है जिन्हें, तो अगर आप नाइट क्रीमें गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं तो लोग अक्सर मैंने देखा है वो कह रहे होते हैं कि भाई नाइट क्रीमें जो होती है ना वो गर्मियों में जो है ज्यादा असर नहीं दिखाती या फिर गर्मियों में ज्यादा मजा नहीं आता लगाने में। तो ऐसा सीन है, जब आप गर्मियों में इस्तेमाल करना चाहते हैं कोई ऐसा प्रोडक्ट जो भाई लाइट वेटेड हो और आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करे, आपकी स्किन की खूबसूरती को मेंटेन करे, आपकी खूबसूरती को बढ़ाता रहे, आपकी स्किन को ग्लो देता रहे, तो भाई जान बिल्कुल आप लोगों के लिए इस तरह के प्रोडक्ट्स लेकर हाजिर हो चुके हैं जिनका इस्तेमाल करके ना सिर्फ आप अपनी खूबसूरती को बढ़ाते रहेंगे बल्कि गर्मियों का सलूशन भी आपके पास मौजूद होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई जान हमारे पास मौजूद है व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम, और व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम के साथ आपको मिल रहा है व्हाइट एश ब्यूटी सोप, और उसके साथ साथ आपको मिल रहा है व्हाइट एश विटामिन सी फेस वॉश, और उसके अलावा आप लोगों को मिल रही है जनाब व्हाइट एश की लवली क्रीम। व्हाइट एश की लवली क्रीम की तो मैं क्या ही बात बताऊं जनाब, ये तो इतना कमाल का प्रोडक्ट है कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद ही कहेंगे जनाब कि ये तो भाई मतलब गेम चेंजर साबित हो गया। तो व्हाइट एश की लवली क्रीम जिसके अंदर 30 विटामिन के कैप्सूल एड किए गए हैं और साथ ही साथ सनस्क्रीन भी एड की गई है ताकि आप लोगों को खूबसूरती भी मिले और आप लोगों के चेहरे की जो स्किन

0: वो प्रोटेक्ट भी रहे सन से, सूरज से और उसके नुकसानदायक किरणों से। और उसके अलावा है जनाब हमारे पास डॉक्टर पिंपल नाम से ये एक्ने के लिए ट्यूब। डॉक्टर पिंपल नाम से अगर आप एक्ने के लिए ट्यूब इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर आपके चेहरे पर दाने हैं तो वो अब खत्म होने वाले, क्योंकि आपके पास डॉक्टर पिंपल ट्यूब मौजूद है। तो डॉक्टर पिंपल का ट्यूब आप इस्तेमाल करेंगे ताकि आपके चेहरे के एक्नेस खत्म हो जाएं। और उसके साथ साथ हमारे पास जो है डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी मौजूद है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों की खूबसूरती के लिए है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको मिल रहा है डी स्किन का फेस वॉश। ये बहुत ही शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट्स आप लोगों को बताती रहूंगी वो बहुत ही आला क्वालिटी के होंगे। बिल्कुल जी, आप जरा आराम से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप समझ नहीं पाते हैं कि आपको जो चीज़ बताई जा रही है तो उससे फायदा क्या आप लोगों को मिलेगा। बस ऐसे होते हैं बहुत से लोग जो कि बस सुनते हैं और वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो भाई जान पहले सुना करें, समझा करें, उसके बाद ही जो है ना आप अमल कर लिया करें। ओके, सो यहाँ पर प्रोग्राम वाइट एशियन टी स्किन ब्यूटी शो में यहाँ पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा है कि गर्मियों में आप किस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। और यासीन गुटारो भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं सकरण से। वालेकुम सलाम प्यारा भामा, ठीक था बुधा की आए हो, ठीक ठाक मजे में। और मीरपुर खास से अब्दुल्ला महरे के अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम बाजी, वाइट एश ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है, सॉन्ग सुनाए फायज अली का। बिल्कुल जी फायज अली आज आपकी फरमाइश के ऊपर आएंगी। और उसके अलावा नूरिसन तुनियो भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं बदीन से। गुड आफ्टरनून एवन आई स्टे, अल्लाह ब्लेस यू विद द बेस्ट विशेस, टेक केयर, अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे, आमीन जी आमीन। यूनिस खोड़ो हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। हिदायतुल्लाह अहमदानी हमारे साथ हैं, हिदायतुल्लाह आपको भी वेलकम हो गया जी। आदिल हुसैन हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम। आदिल लिखते हैं, मोहब्बत देख ली हमने जमाने भर के लोगों की, जहाँ कुछ दाम ज्यादा हो वहाँ इंसान बिकते हैं, क्या बात है। और उसके अलावा नूर सिंतुनियो भाई कहते हैं कि अदी सदरा आपका वाइट एश एन डी ब्यूटी शो बड़ा सुपर डुपर है, बहुत शुक्रिया जी। आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिएगा, आपको प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। और उस्मान बलूच हमारे साथ मौजूद है, हेलो चाचा खालिद चुनी जो आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम। मोराई जबार चगड़ हमें सुन रहे हैं, माशाल्लाह वीआईपी प्रोग्राम, थैंक यू। इकबाल आशारिया में सुन रहे हैं, इकबाल लाशारिया में मीरपुर खास से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। दर्द दिल हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम स्वीटी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं, मजे में। और उसके साथ साथ टॉपिक को फॉलो करते जाइए, पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते जाइए, दोस्तों को मेंशन कीजिए। यहाँ पर टाइम हो जाता है, जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आएंगे, क्योंकि आपका हमारा साथ पूरी पूरी 3 बजे तक है। तो सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो।
1: It's 1:30 p.m. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर

0: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 0300-3385-569 0300-3385-69।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन्स और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

ओके जनाब, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क. हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो बीरपुर खास मटियारी सगरन मेहराबपुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो. स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से. तो बिल्कुल से ये बहुत ही ज्यादा हसीन आपको बनाने वाले प्रोडक्ट्स है. अगर आप खूबसूरत रहना चाहते हैं, खूबसूरती को हासिल करना चाहते हैं, तो ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल आप लोगों के लिए है. और सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात है, ये ऑल स्किन टाइप के लिए है. यानी कि अगर आपको ये चीज़ परेशान कर रही है कि भाई हम जो है ना हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा पाते हैं, तो क्या हम लगा सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल जी आप लगा सकते हैं. कोई इसमें टेंशन वाली बात ही नहीं है, क्योंकि अगर आप व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जो है जनाब आपको पता होना चाहिए कि व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम आपके जल्द की खूबसूरती को निखारने के लिए और एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा लुक आपको देने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सी ब्यूटी क्रीम है. ये जल्द को नरम मुलायम और तरोताजा बनाती है और इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे की खुश्की, दाग धब्बे, बेरोनगी, ये सारी चीजें गुम हो जाती है, जबकि आपकी जल्द ज्यादा साफ और चमकदार महसूस होने लग जाती है. व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम में शामिल जनाब खास अज्जा जैसे कि एलोवेरा मौजूद है, एवोकाडो मौजूद है, ये आपकी जल्द की जो है ना हिफाजत करते कुदरती आपको खूबसूरती भी देती है और आपकी खूबसूरती को उजागर भी करते हैं. रोजाना अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका चेहरा फ्रेश, खूबसूरत और पुरकशिश नजर आना स्टार्ट हो जाता है. तो अगर आप व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, वो भी 2-3 रातें लगातार अगर आपने इस्तेमाल किया, तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम तो आप लोगों की स्किन जो है वो खूबसूरत होती जाएगी. तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जो कि नाइट क्रीम है, आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सोने से पहले आप इस्तेमाल कीजिएगा. लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, एक और काम है जो आपने करना है, वो ये कि अगर आप व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम के साथ साथ जो है ना आपने व्हाइट एश ब्यूटी सोप परचेज करना है. या फिर अगर आप व्हाइट एश ब्यूटी सोप नहीं लगाना चाहते हैं तो आपके लिए जो है व्हाइट एश का वाइटामिन सी का फेस वॉश भी मौजूद है. तो व्हाइट एश का वाइटामिन सी का फेस वॉश है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं. आपके चेहरे पर जो ग्लो है वो ज्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि ऐसा है ना कि जिसके अंदर वाइटामिन सी मौजूद होती है तो जाहिर सी बात है आपकी खूबसूरती को मजीद बढ़ाने वाला ये फेस वॉश है. अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी खूबसूरती बढ़ती जाएगी और उसके साथ साथ बाकी जो लोग सोप लगाते हैं तो वो व्हाइट एश का ब्यूटी सोप इस्तेमाल करेंगे. इसके अंदर भी एलोवेरा और एवोकाडो मौजूद है. तो बिल्कुल जी बहुत ही शानदार क्वालिटी से तैयारशुदा होने वाले ये प्रोडक्ट्स हैं. आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर जाइए, वहां से नाम लेकर तलब कीजिए. अगर नहीं मिल रहे तो आपने डायल करना है 03-15-799-0595. ये नंबर आपकी आसानी के लिए आप जरूर से डायल कीजिएगा. उन्हें बताइए कि आपके करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल नहीं ये प्रोडक्ट और आप अवेलेबल कराना चाहते हैं. तो कॉन्टेक्ट नंबर 03-15-799-0595 डायल कीजिए और जल्दी से अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराते जाइए. उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया नहीं, जरा हमारे पास और भी मजीद प्रोडक्ट है, जैसे कि भाई हमारे पास डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी क्रीम है. और डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी क्रीम जो है ये जनाब आप लोगों के चेहरे पर जो एक्नी होती ना, दाने होती ना, उनको खत्म करने के लिए है. तो डॉक्टर पिम्पल नाम से ये आयुर्वेदिक फार्मूला के साथ तैयारशुदा ये एंटी एक्नी ट्यूब है जो कि आप इजीली कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं. और एक मजे की बात है कि जब आप डॉक्टर पिम्पल ये ट्यूब इस्तेमाल करते हैं अपने चेहरे के ऊपर तो आप लोगों के चेहरे पर जो दाने हैं ना वो सारे खत्म हो जाते हैं. और साथ साथ जो है ना पाकिस्तान में पहली मर्तबा एक ऐसा ट्यूब तैयार किया गया है, एंटी एक्नी फार्मूला तैयार किया गया है जो कि फुल आयुर्वेदिक है, जिसके अंदर जनाब ट्री ट्री ऑयल मौजूद है, एलोवेरा मौजूद है, मिंट मौजूद है और बहुत सारी ऐसी चीजें, नीम भी मौजूद है और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आपके चेहरे पर एक्नीस का खात्मा करेंगी, आपके चेहरे पर जो दाग धब्बे हैं वो खत्म हो जाएंगे, आपके चेहरे की हिफाजत करेगी. और उसके अलावा एक और मजे की बात, अगर आपके चेहरे पर कोई जलने का निशान है, कोई कट का निशान है, वो भी खत्म हो जाता है जब आप डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं. तो डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी क्रीम जो है ना ये ट्यूब है और ये ट्यूब आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे ये थोड़ा आप लोगों को बता दें चलो, कि जो लोग डॉक्टर पिम्पल का ये ट्यूब इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जनाब सबसे पहले जो है ना अगर आप व्हाइट एश का सोप लगाते हैं तो सोप अपना फेस वॉश करेंगे, सोप के साथ अगर आप फेस वॉश लगाते तो फेस वॉश से अपना फेस वॉश करेंगे. उसके बाद क्या करेंगे कि आप लोग जो है ना अपने हाथ भी अच्छे तरीके से क्लीन कीजिएगा, क्योंकि हाथों से जब आप लगाते हैं तो हाथों पर बहुत सारे ऐसे जर्म्स होते हैं जो अगर आपके फेस पर आ जाते हैं तो फिर मसला बन जाता है. तो हाथों को भी अच्छे तरीके से वॉश कीजिए, क्लीन कीजिए, फेस को भी अच्छे से क्लीन कीजिए. उसके बाद डॉक्टर पिम्पल का ये जो एक्नी ट्यूब है ना ये
آپ اپنے چہرے پر استعمال کیجیے, اپلائی کیجیے, جہاں جہاں پر ایکنی ہے, جہاں جہاں پر نشان ہے, جہاں جہاں پر کٹ کا نشان ہے, جلنے کا نشان ہے, ان تمام سے نشانات کے اوپر جو ہے نا ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی یہ ٹیوب استعمال کیجیے. اس کے بعد رات کے ٹائم اپلائی کر رہے ہیں آپ یا پھر دن کے ٹائم, رات کے ٹائم استعمال کریں پھر تو بھائی کوئی مسئلے کی بات نہیں. اگر آپ دن میں استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ نے تھوڑی سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو جب ریسٹنگ ٹائم مل رہا ہے نا, یعنی کہ آپ کو لگے کہ بس ہم نے کوئی کام نہیں کرنا, اس ٹائم میں آپ لگا لیجیے گا اور اس کے بعد ریسٹ کیجیے گا. ایک دو گھنٹہ لگا لینے کے بعد آپ اسے ریموو کر لیجیے گا اور آپ کو اچھے ریزلٹس ملنا اسٹارٹ ہو جائیں گے. تو لگاتے جائیے, خوبصورتی کو بڑھاتے جائیے. اور ہاں, ایک مرتبہ ہی لگانا ہے. اگر آپ رات کے ٹائم لگا رہے ہیں تو ایک مرتبہ لگائیں گے, دن کے ٹائم لگا رہے ہیں تو ایک مرتبہ لگائیں گے. یعنی کہ دو مرتبہ نہیں کہ آپ رات میں بھی لگائیں گے دن میں بھی لگائیں گے, ایسا نہیں. صرف ایک مرتبہ لگائیں, یا تو رات میں لگائیں یا تو دن میں لگائیں, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنا فیس واش ضرور کیا کریں, صاف صفائی کا خیال رکھا کریں, اس سے بھی آپ کے چہرے کی ایکنی جو ہے نا وہ کنٹرول ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ کو بھی ایکنی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے تو آپ ڈاکٹر پمپل کا اینٹی ایکنی یہ جو ٹیوب ہے نا یہ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. لڑکے لڑکیاں سبھی لگائیں گے, آل اسکن ٹائپ کے لیے ہے. اور جناب ڈاکٹر سے تصدیق شدہ یہ ٹیوب ہے, آپ بالکل استعمال کر سکتے ہیں, کوئی بھی ٹینشن والی بات نہیں ہے. اوکے جی, تو یہاں پر آپ ہمیں جوائن کرتے جا رہے ہیں, آپ کے فیڈ بیکس ہیں, آپ لوگوں کے میسیجز ہیں جو کہ ہم پڑھتے رہیں گے پروگرام میں, آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے. لیکن میں نے جو آج آپ لوگوں سے سوال پوچھا ہے تو اس کی جانب بھی ذرا آتے ہیں. تو میں نے آج آپ لوگوں سے سوال پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس گرمی کے موسم میں آپ کس پر بھروسہ زیادہ کرتے ہیں. گرمیوں کا جب سیزن آ جاتا ہے نا تو ایسا ہوتا ہے کہ چوندا ہے نا سندھی میں چوندا تھا بابا مانو پان کے پان نہ تو وڑے وہ گالا. بالکل گرمیوں کے موسم میں تمام کہتے یقین بھروسو کندایو یہ تا مکھے بدھایو پیا ان سا گڈو گڈ تواں چلائے گانا ائن لسٹ میں بالکل اسا گانا بدندا سی ائی تواں جا میسجز ائن تواں پیار بھریوں کچہریوں کیو پیا بابا بالکل تواں جے میسج طرف اچوں تھا. اوکے, سو فیس بک وارا جے کی مانو ائن پوسٹ کے لائک اینڈ شیئر کنا ہلو بابا, جلدی جلدی لائک اینڈ شیئر کیو, پیسا کون لگن ائن صفا مفت وارو کم ائے سو تواں لائک اینڈ شیئر کنا ہلو ائن وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹ جو استعمال کنا ہلو تواں جے قریبی جنرل سٹور سے اویلیبل ائن تا ڈاڑی بھلی گالا اگر نہ ہن اویلیبل تا پوی تواں ڈائل کنا ہلو 03 15 799 0595. یہ نمبر تمہاں ڈائل کرو, پانی قریبی جنرل سٹور سے اویلیبل کرائیں رہو, ٹھیک ہے. ان سے گڈو گڈ جناب ہتے اماں جا میسجز آئن, میسجز بالکل پڑھوں تھا پر ہی وارو سانگ اسائن لسٹ میں موجود ہے, سو اسا ہی وارو سانگ بدندا سی. ڈاڈو وی آئی پی گانو ہے, تماں کے ونندو نہ ونے تا پیسہ واپس کرنا سی, صحیح ہے.

नजीर खोसो में सुन रहे हैं बलोचिस्तान से, वेलकम हो गया भाई का। और आदिल हुसैन कहते हैं टॉपिक आंसर, सदरा गर्मी हो या सर्दी हो मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, लोग इधर की बातें उधर बताते हैं। ये तो सही बात है वैसे। आशिक खास के लिए मरसद मौजूद, वालेकुम अस्सलाम। आदिल कहते हैं कि मगर आप पर भरोसा करते हैं हम जी, मेरे ऊपर भरोसा करें क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के फायदे की बात बताती हूँ। प्रेम चंद भाई मरसद मौजूद है, हेलो। जहीर अब्बास मरसद मौजूद है, माय नेम इज जहीर अब्बास फ्रॉम मोरो। सिस्टर आपका शो वेरी नाइस है, सिस्टर सॉन्ग सुनाइएगा मुनव्वर का। मेरे फ्रेंड्स को मुनीर अहमद, सुधीर और अहमद को। चलें जी ठीक है, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी आपकी पसंद का हम गाना सुनेंगे। और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। बताएं जरा वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके एरिया में मिल रहे हैं नहीं, इस्तेमाल करने का इरादा है या नहीं, बताएं तो जरा। कैसे शर्माना अच्छा नूरिस तुनियो कहते हैं कि चापे गर्मी में हम आप और आपके शो पर भरोसा करते हैं, सच्ची बताएं। वासु भाई मरसद मौजूद है, हेलो वासु भाई। मोहम्मद सालेह लगारी मरसद मौजूद है, मोरो से आप हमारा शो सुन रहे हैं, मोरो वालों को वेलकम जी। एसन अली आरबानी मरसद मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। एसन छाला खुश आयो।

बिल्कुल सुना प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो आपके सिद्धराव के साथ मौजूद है मेरे साथ कौन है मुझे बता दी जा रहे हैं और उसके अलावा वासु भाई कहते हैं सिडो अजो खां पोई तवां जे प्रोग्राम में हर रोज हाजिरी भरना भरनी पवंदी हाँ जी बिल्कुल रोज दींदा कयो और ये हमारे साथ है मुलाजिम भाई आपको भी वेलकम हो गया सनौला बिरोई हमारे साथ में मौजूद है वालेकुम अस्सलाम किशोर भाई वालेकुम अस्सलाम अदा खुशाही मानी वानी खादी या वनी खाईंदे वनी खाईंदा से अस नाश्तो करी ईंदा आयो केड़ा जगी गानो न वणियो कुटगी जा के दार आयो

0: लोगों ने बहुत ही प्यारा गाना, और एक और गाना भाई हमारी लिस्ट में मौजूद है जो कि होने वाला है फायजा अली की आवाज में और मुमताज मोराई की आवाज में। फायजा अली से गाने जी तमा हेडी सारी रिक्वेस्ट कना है, सो ही गानो ने सबने के डेडिकेट हुंदो आई प्रोग्राम में। अगर तमासा सगट मौजूद है त बाबा मुखे यो भी बुधाइंदा हलो त तमा व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स मां केड़ो प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो पया या केड़े प्रोडक्ट इस्तेमाल करने जी बारे में तमा सोचो आ है
1: पेर थड़िया त तू यार।

वाह साईं वाह, वाह साईं वाह, ॾाढो भलो गानो ॿुधो पिया. ही प्रोग्राम आहे जनाब वाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो. स्पॉन्सर्ड कयो वञे पियो वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स. एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे तावन सां तव्हां इस्तेमालु कंदा, तव्हां ख़ूबसूरत थी वेंदा ऐं तव्हां सुहिणा बि थी वेंदा. सही आहे. अच्छा, यहां पर हमारे साथ हैं जी हिदायतुल्लाह. ओके जी, आपका बहुत शुक्रिया. और यहाँ पर महर इरफान सियाल साहब भी हमारा शो सुन रहे हैं. तो महर इरफान सियाल साहब, आपको बहुत शुक्रिया वेलकम के साथ साथ. ओके जी, पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते जाइए. दर्दी दिल कहती की टॉपिक चंदा, मैं तो हवा पर भरोसा करती हूँ. अच्छा. ये तो लेटेस्ट न्यूज है. हजार कंजा तो ये हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम अस्सलाम हजार भाई, चाला खुश आयो. हजार खुलो ना कराए जो ना तो खत्म थी वेंदो.

0: वाह साईं वाह एसएनएलई बुकटी भा लाड़का ने खासा के ज्वाइन करे चुकायो सो मोहब्बत अवां जो चाचा खाले जुनी जो सगर मौजूद आन बिल्कुल जी डेली तमासा ने प्रोग्राम जेसो थिन आयो सो मोहब्बत अवां जो भी इन खा अलावा आदिल हुसैन कहते हैं अमी पूछ रही है आपको बलोची में बात करनी आती नहीं नहीं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं अली मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है हेलो दद्दे दिल कहती है कि हाँ याद आया तुम पर और शो पर भरोसा है मुझे गर्मी में और कुछ अच्छा लगे ना लगे लेकिन तुम्हारा शो बहुत अच्छा लगता है जय हुदा
1: जवानी जो
0: अच्छा हजार भाई कहते हैं कि हम आप पर और वाइट एश के लवली क्रीम पर भरोसा करते हैं क्या बात है जी वाइट एश की लवली क्रीम जी तो बाबा अलग कुछ अलग है वाइट एश की लवली क्रीम जी मानू लगान पाया ना सफा सोना थी ना वन पाया छो तो वाइट एश की लवली क्रीम तवाजी खूबसूरती के बधाए भी थी तवाजी खूबसूरती के जो मेंटेन भी रखी थी तवाजी खूबसूरती के जो ना प्रोटेक्ट भी करे थी सो एकड़ी क्रीम के अंदर तवा एतरा सारा फायदा मिलन था जालमो तुम वो चोन पाया यो हर स्किन टोन की लाया है तवाजी लाइकड़ी फेयरनेस क्रीम है जैसे तुम डी में लगाओ रात में लगाओ तवाजी मर्जी है हर एज वो मानू लगाए सके तो बाबा एडो मजेदार प्रोडक्ट मौजूद है तुम जरूर ट्राई करो ठीक है अच्छा अली मोहम्मद हमें सुन रहे हैं अली मोहम्मद भाई आपका बहुत शुक्रिया अहमद हमारे साथ है अहमद हालात वालेकुम अस्सलाम अनवर भाभी हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम कहते हैं वाइट एच डी स्किन प्रोग्राम करने ते वेलकम कयूं था वाह सही वाह वेलकम पोस्ट के लाइक शेयर करना हलो ठीक है इतने कंजूसी न करना करो और यहाँ पे टाइम हो जाता है जरा हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाते हैं और इसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आएंगे तो आपने बस कहीं नहीं जाना हमारे साथ मौजूद रहिएगा सुनते रहिए एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए पूरी पूरी तीन बजे तक मैं आपके साथ मौजूद रहने वाली हूँ इसी उम्मीद के साथ कि आप भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे तो सुनते रहिए प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते रहिए खूबसूरत होते रहिए

0: It's 2 PM. This time check is brought to you by.
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.
3: कराची में मंशियात विकरो कंदड़ औरत की गिरफ्तारी ते इदारन की साराह थियण घुर्जे. कोताहिन की भली निशानदेही कयो पर सुठे कम की तारीफ भी थियण घुर्जे. सिंध के सीनियर वजीर सैद लीना मेमन है मंशियात विकरो कंदड़ औरत के बिना हथखड़ी अदालत में पेश कंदड़ अहलकारन के मुअत्तल कयो वियो आहे. सिंध में अमन अमान की सूरतहाल भी बेहतर है. समूरा हाईवेज महफूज आन. सूबे में सनत लगने के लिए हुकूमत जमीन भी मुफ्त में डेई रही है. शाहराह भुट्टो भी हलदड़ महीने ही खोली वेंदी.

0: कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ फिंकी खिलाफ पंजाब में भी पुलिस जांच शुरू कर छी। सीसीडी अनमोल उर्फ फिंकी के मुड़स रिटायर्ड इंस्पेक्टर के जांच के लिए तलब करे वरतो। पंजाब पुलिस के जरिए मुझे फिंकी बारे मामले की जांच सीसीडी कर रही है। फिंकी के कराची का लाहौर भी आने सकते थो।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
4: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
5: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
6: खुशखबरी खुशखबरी, हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0385569
7: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो, हाने वक्त आहे चमकण जो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो, पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करयो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो, जीए होजे हीरो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज़।

0: ऐं कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: This program is brought to you by
2: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
3: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आहे।
4: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड मेरापुर।
5: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: 15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94
4: जदीद तरीके से इलाज

ओके जनाब, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क. हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोर और मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना की लाइव स्टूडियो से आपके सिदरा आपके साथ मौजूद है. प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. तो बिल्कुल सही आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स हैं बल्कि आप लोगों के चेहरे को हमेशा के लिए खूबसूरत लुक भी देने वाले हैं और उसके साथ साथ आपके चेहरे की हिफाजत भी करने वाले प्रोडक्ट हैं. तो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि कौन सा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ अगर आप इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप ये भी मेरे साथ शेयर करें कि भाई जान आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं. ओके, सो इसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना विटामिन ई बीड्स शामिल किए गए हैं और माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन से तैयारशुदा होने वाला ये प्रोडक्ट है. बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ साथ आप लोगों की ऑल स्किन टाइप के लिए और जनाब ये इतना जबरदस्त क्वालिटी के साथ तैयारशुदा है ना कि जब आप इस्तेमाल करते हैं या फिर आप देखते हैं तो देखते साथ ही आप लोगों को पता चल जाता है कि भाई वाकई प्रोडक्ट जो है ना वो बहुत अच्छा है. क्योंकि अक्सर हम जो भी चीज परचेज करते हैं तो पहली चीज जो हम उसमें देखते हैं वो ये होती है कि वो प्रोडक्ट दिखता कैसा है या उसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की क्वालिटी की क्या ही बात की जाए, बहुत जबरदस्त है और उसके साथ साथ इसके अंदर विटामिन ई बीड्स शामिल किए गए हैं. तो आप जरूर से ट्राई करके देखिएगा और जनाब सिर्फ 2 दिनों में आप लोगों को वाजिब नतायज के लिए जो है ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना होगा. क्योंकि 2 दिन अगर आप लगातार इस्तेमाल करते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं. और जनाब ये बहुत ही शानदार तरीके से तैयार की गई है आप शानदार से लिसनर्स के लिए ताकि आप लगाएं तो आप लोगों को ये एहसास हो कि भाई आपकी खूबसूरती जो है ना अब आपके पास मौजूद है और साथ साथ आपकी जल्द की सख्त जो है ना वो बेहतर हो जाएगी. आपके चेहरे की स्किन नर्म हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी और आपकी स्किन जो है ना वो हमेशा हाइड्रेटेड रहेगी. ऐसा नहीं कि आप लोग ये सोचे कि गर्मियों का जब सीजन आ जाता है तो आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा ऑयल निकल आता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है. गर्मियों के सीजन में आप अपनी स्किन का ख्याल नहीं रख पाते तो उन सभी चीजों को देखते साथ ही डी स्किन ब्यूटी क्रीम तैयार की गई है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे की हिफाजत करेगी, आपके चेहरे के ऑयल को कंट्रोल करेगी. और जनाब आप इसे रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे यानी कि सोने से पहले, बाकी दिन में आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन का फेस वॉश. और फेस वॉश अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी डी स्किन का फेस वॉश भी अवेलेबल है. अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कर रहे हैं तो साथ में डी स्किन का फेस वॉश जरूर लीजिएगा क्योंकि ये दोनों चीजें जब आप साथ में इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा परफेक्ट वाला निखार. तो जरूर से ट्राई कीजिए, दिन में आप डी स्किन फेस वॉश से अपना फेस वॉश करते रहिए, 2 मरतबा लगाएं, 3 मरतबा लगाएं और उसके साथ साथ जो है ना रात के टाइम सोने से पहले आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम लाजमी इस्तेमाल करनी है. लेकिन फेस वॉश तब भी आपने करना है, फेस वॉश किए बगैर आप प्रोडक्ट नहीं लगाया करें क्योंकि जब आप फेस वॉश किए बगैर कोई भी क्रीम लगा रहे होते तो ऐसा समझ लें कि वो आप जाया कर रहे होते क्योंकि उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपके चेहरे पर पहले से ही जो है ना वो ऑयल होता है, वो पोल्यूशन होता है, वो जर्म्स होते हैं. तो वो आपके चेहरे पर जो प्रोडक्ट आप लगा रहे होते ना तो वो बस आप लेप कर रहे होते हैं, बाकी तो वो असर नहीं दिखा रहा होता अपना. तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट अपने चेहरे पर अप्लाई करें तो काइंडली ये कोशिश किया करें कि आप फेस वॉश कर लिया करें, ठीक है. अच्छे बच्चे बन जाएं, नोने पुत्र बन जाएं, अच्छे अच्छे क्लीन होकर फिर आप बिल्कुल जी क्रीम लगाया करें ताकि आपके चेहरे पर परफेक्ट वाला निखार मिले और आपको खूबसूरती मिले, वो वाली जो क्या आप हासिल करना चाहते हैं.

जनाब, अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो फिर आप डायल करेंगे 03-15-799-0595 03-15-799-0595। ये नंबर डायल कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराते जाइए और वहाँ से जाकर परचेज करते जाइए, क्योंकि आपकी खूबसूरती अब आपके करीबी जनरल स्टोर पर है। तो जाइए और परचेज कीजिए, अगर नहीं अवेलेबल तो अवेलेबल कराइए, ये भी आपके हाथ में है। ओके जी, तो प्रोग्राम में यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद थे। मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा कि गर्मियों में आप लोग भरोसा किस पर करते हैं। ओके जी, तो एक गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है, हम जरा थोड़ा सा ना गाना सुन लेते हैं और गाने के बाद जो है ना हम आप लोगों की कुछ कॉल्स भी पिक करेंगे, ठीक है। और साथ साथ आपके मैसेजेस की जाने भी आते, पैनल पर आपका काफी सारा रश हो चुका है, तो पैनल की जाने बातें ये गाना हमारे पास मौजूद है। एड़ो हिन दिल ते मिठा छड़ो थे जादू करे मैं तुझे तो खिड़सा मत मुझो तो फिरे अच्छा गाना है।

ओके जी, हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी गर्मी डे माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान, कैसी हैं? मैं ठीक, आप बताएं कैसी हैं? फजीला सिंधी कहती, टॉपिक नो ना किसी पर भी नहीं डियर सिस्टर। स्वीटी, आजकल गर्मी के टॉपिक पूछ रही हो तो क्या गर्मी में सर्दी वाले टॉपिक पूछूं? बताओ जरा। नहीं नहीं बोलो, मैं पूछ लूंगी।

अभाव। अच्छा ये हमारे साथ हैं जी, सलाम आरजे सिद्रा, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? ये हमारे साथ हैं इमरान अली बिरोही भाई, आपका बहुत शुक्रिया। प्रिंस अहमद अली रिंद हमारे साथ हैं फ्रॉम अहमद आबाद, वालेकुम अस्सलाम पाकिस्तान पाक आर्मी। स्वीट शो प्लीज रहमान मुगल का कोई भी सॉन्ग लगाइएगा। हाँ जी ये फरमाइश आपकी रह जाती है, कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश ना रहे, लेकिन अगर रह जाती है तो फिर नाराज मत हुआ करें।

अच्छा ये कश्यप कहती हाय आपी आप कैसी हैं गुड आफ्टरनून आज मेरी सिस्टर माविजा की हैप्पी बर्थडे है उसके लिए अच्छा सा गाना चलाइएगा जी जी ठीक है ओके ओके और उसके अलावा माविजा को बोलिए कि वो भी जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू करे और उसके अलावा कश्यप कहती है सिद्रा ओ सिद्रा कहती है लाजवाब है हमारी प्यारी आपी सिद्रा मुस्कान आपी आपका शो बहुत लाजवाब होता है हम आपका बहुत शो पसंद करते हैं बस हमारी आंख जो है ना हर नए दिन को घड़ियाल पर होती है कि कब एक होगा आपी आएगी मुझे आपका बहुत इंतजार होता है बहुत ही आपी कल आपको मेरी तरफ से छुट्टी है ओके ओके ओके सुभाणे कश्यप की तरफा मुझे छुट्टी अथव ॿुधी छॾियो अच्छा घोट मोहम्मद तैयब थे हाबी बुला थे कहते हैं सांग बुधराए जो सपना सपना तुझा सपना निंड अचे तो

वाह साईं वाह, भलो गानो आ साईं, तमाके वणंदो हुंदो। अच्छा मर्शद माधोदी अदी जी, हमारे दोस्तों को सुपर रिजल्ट मिला है, तो अब मैं, आतिफ, मंठार, शायान, राहुल, यासीन और आकाश, हम अब साथ में, ओके ओके जी, सारे लगाइएगा। वैसे कौन सा प्रोडक्ट आप लगा रहे हैं कि आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, जयपाल भाई बताएं तो। और लिखते हैं, समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते। सलाम अदीजी, नाइस शो, शानदार प्रोडक्ट्स है, वाइट एच एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, गुड ऑल प्रोडक्ट्स एंड यूज कर रहे हैं, लवली ब्यूटी एंड सोप को भी इंजॉय कर रहे हैं आप हमारा शो भी। थैंक यू जी, थैंक यू। वैसे हाँ, ये लवली क्रीम का तो जलवायु कुछ अपना है, तो जो लोग इस्तेमाल करें वो बिल्कुल यही कह रहे हैं, तो आप भी इस्तेमाल कीजिए, जेके मानू अन्य रह जनता से।

अच्छा इरम भी हमारे साथ मौजूद है। इरम आपका भी बहुत शुक्रिया, वेलकम। कहती है इस तरह जवाब है अल्लाह पर एंड चले, ये भी अच्छी बात है। जयपाल भाई कहते हैं टॉपिक एसी, अदि जी एसी पर भरोसा नहीं, लाइट या सोलर पर भी, पर एसी नहीं, एसी ने तो एसी जैसी की होती है। बिल्कुल जी, ये सही बात है। वैसे एसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और बाकी आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट के ऊपर भी आप भरोसा कर सकते हैं। तो ये जो भरोसे वाली बात होती है ना, ये थोड़ी बहुत जो है ना वो देखा जाए तो कभी कभार इंसान को जो है ना सही रास्ते पर भी ले आती है। क्योंकि सही भरोसा करना आप लोगों के लिए सही साबित होता है जब आप सही इंसान पर भरोसा करते हैं, सही चीजों के ऊपर भरोसा करते हैं। तो यहीं पर आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हम लेकर आए हैं ताकि आप लोग सही प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा कर सकें और सही प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकें ताकि आप लोगों की खूबसूरती जो है ना वो बढ़ती जाए। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए अवेलेबल है क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई बीट्स मौजूद है जनाब। विटामिन ई बीट्स पाकिस्तान में थोड़े से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर जो है ना विटामिन ई बीट्स डाले गए हैं और उन्हीं में डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी शामिल है। तो जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करिए और साथ साथ माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन से तैयार शुदा है, 2 रातों के इस्तेमाल से आपको रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है। तो आप जरूर से ट्राई कीजिए और साथ में डी स्किन का फेस वॉश भी लगाइएगा ताकि आपको रिजल्ट्स मिले बहुत ज्यादा वाले। और अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं देन आपने डायल करना है 03 15 799 0595।

अच्छा जयपाल भाई, बस गर्मी में तो गुजारा हो ही जाता है भाई, गुजारो तो करणो पवंदो आहे न भले केड़ो भी मौसम हुजे। केते रात को चलेंगे, ठीक है, एंजॉय कीजिएगा। और ये कहते हैं इमरान अली बिरोही भाई, टीचर क्या हाल है आपका? आपका जवाब है सर्दी हो या गर्मी, हमारा भरोसा अल्लाह पर है और किसी पर नहीं। ये तो अच्छी बात आपने कर दी हमारे साथ, बहुत शुक्रिया जी। और इसके अलावा फेसबुक वाले लोग हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं बताएं जल्दी से। अच्छा किशोर भाई क्या कहते हैं कि मानो हर चीज ते भरोसो करे सके तो पर इंसान ते न करे। शायद सही गाना।

अच्छा ये सिंगार अली जमाली हमारे साथ है आई एम ओके जी आपने हमें सिंध न्यूज HD से ज्वाइन किया है जियो फखर सिंध न्यूज से अच्छा जी चले बहुत शुक्रिया आप CEO हैं वहाँ के क्या नाम है आपका सिंगार अली जमाली बहुत शुक्रिया वेलकम आपका और जनाब आप सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर चले जाइए वहां से नाम लेकर तलब कीजिए आपको नहीं मिल रहे तो जो नंबर आपको बताया जा रहा है उसके ऊपर रابطہ करते रहिए और अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराते रहिए स्मार्टो गोपांग भी हमारे साथ मौजूद है बिल्कुल जी आपके मैसेजेस कॉमेंट्स पढ़ते हैं जरा सा सब्र किया करें और यहाँ पर टाइम हो जाता है जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानेब जाते हैं उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं तो सुनते रहिए इंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग 88 नेटवर्क आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिन ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो
0: जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
5: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूरु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण MA DHMS सिंध RHMB इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि हर जुमे छंछर ऐं आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो याद रखंदा मरीजन खे दवा स्टोर तां वठणी पवंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमज़ोरी कन जो वहण कन जो सूर घटि ॿुधण में अचणु शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपाटाइटिस BC गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दनि जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-8151
6: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारनि ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राब्ते जे लाइ 0385 569-0300-3883-8569
7: किसानों के आलमी दिन पर

ओके जनाब, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास। यहाँ पर आपको कहते हैं वेलकम एंड खुश आमदीद। हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में। तो जनाब आपका बहुत ज्यादा वाला शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद है। जिन लोगों ने अभी अभी सुना है स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है, आप सब लोगों का थैंक यू। और साथ ही साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं जनाब व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। तो लगाते जा रहे हैं, खूबसूरत होते जा रहे हैं, अपनी खूबसूरती को मजीद बढ़ाते जा रहे हैं। तो बिल्कुल जी बढ़ाते जाइए और खूबसूरतियाँ हासिल करते जाए, क्योंकि खूबसूरती के बिना भी इंसान जो ना भलो ना लगन हो। तो अगर तमा जी स्किन जो तमा जी स्किन चाहे दी तमा के जो ना थोड़ा मजेदार प्रोडक्ट्स हुजन घुर्जन आई तमा जी स्किन ते जो आ जाना आहन या फिर तमा जी तमाजी स्किन ते जेको ऑयल काफी सारो जमा थी वेंदो आहे, तमा सोची ना ता बाबा इनके कंट्रोल किया कजे, तो तमा इस्तेमाल कयो व्हाइट एज जा प्रोडक्ट्स या डी स्किन जा प्रोडक्ट। अच्छा एक बी गाल तमा के बुधाई देला, जेके व्हाइट एज जा प्रोडक्ट आए ना उनन में खोर सारा प्रोडक्ट मौजूद आए, आई हर तरह तमाजी स्किन के प्रोटेक्ट करने लाए। आई डी स्किन में ना सिर्फ तमाजे लाए प्रोडक्ट आए, जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम आए, डी स्किन जो फेस वॉश आए, ठीक है। सो जेके मानू लाइट वेटेड प्रोडक्ट जे तलाश में आए नहीं चवन था बाबा असांके सिर्फ कोई अड़ो प्रोडक्ट खपे जेको असांजी स्किन जी हिफाज़त करे, ऐं मतलब जेको आहे त खूबसूरती बि ॾे ऐं तव्हांजी स्किन खे क्लियर बि बणाए, त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाए सघो था जेको सफ़ा लाइट वेटेड फार्मूलो आहे। ॿिनि रातिनि जे इस्तेमाल सां तव्हांखे खूबसूरत निखार ॾींदो। उन सां गॾु तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश लॻाइणो आहे। बाक़ी जेके माण्हू जेके आहिनि इलाही सारा प्रॉब्लम्स आहिनि उन जे फेस सां, जी तव्हांजे चेहरे ते एक्नी आहे, त तव्हांजे लाइ व्हाइट एज जो डॉक्टर पिंपल एक्नी क्लियर ट्यूब आहे। डॉक्टर पिंपल नाले सां तव्हां वठी सघो था, तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल हूंदो। एक्नी आहे जिन माण्हुनि खे हू ही ट्यूब ज़रूरु इस्तेमालु कनि, तव्हांजे चेहरे जा एक्नी ख़तम थी वेंदा। ऐं गर्मियुनि जे मौसम में अक्सर असां परेशान हूंदा त असां कहिड़ो प्रोडक्ट इस्तेमालु कयूं। गर्मियुनि जे मौसम में तव्हांजी ख़ूबसूरती जेका हूंदी आहे सफ़ा डल थी वेंदी आहे, सिज जी वजह सां तव्हांजी स्किन जेका उहा बि सांवरी थी वेंदी आहे। त व्हाइट एज जी लवली क्रीम आहे, व्हाइट एज जी लवली क्रीम तव्हां वठंदा न, जंहिंजे अंदरि 30 वाइटमिन जा कैप्सूल मौजूदु आहिनि, हिन जे अंदरि सनस्क्रीन बि मौजूदु आहे। सो बाबा तमाम मज़ेदार प्रोडक्ट आहे, तव्हां लाज़मी ट्राए कजो। फुल वाइटमिन सां भरपूर आहे, तव्हांजी स्किन खे ख़ूबसूरत बि ख़ूबसूरत बणाए छॾींदो। तव्हां ॾींहं जो बि लॻायो, राति जो बि लॻायो, ऐं सफ़ा असली मज़ो कयो।

ओगणीसो तमाम डायल कयो पया 03-15-799-0595 ठीक है ही नंबर डायल कयो पया करीबी जनरल स्टोर से ही तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल करायो उन सा गडो गड जिको आ त मलाई छापी चवा अच्छा इमरान अली ब्रोई भाई कहते हैं बाजी आपकी पूरी टीम को मेरा सलाम और जो आपका जो अपना कीमती वक्त निकाल कर आपका शो सुनते हैं उन सबको भी सलाम ओके जी क्या बात है बहुत शुक्रिया और उसके अलावा हैं जी हमारे साथ अच्छा जो कमेंट है ना अगर आते जा रहे हैं तो बाकी लोगों के जो कमेंट है ना वो ऊपर चलते जा रहे हैं तो वो कुछ कमेंट्स आप लोगों को रह जाते होंगे मैं कोशिश कर रही हूं कि जल्दी जल्दी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती जाऊं लेकिन कुछ रह जाए तो उनके लिए माजरा ठीक है और गुलाम रहीम बलोच भाई हमारे साथ मौजूद हैं आपको भी वेलकम करते हैं गुलाम रहीम बलोच भाईजान और हिदायतुल्लाह कहते हैं टॉपिक आंसर भरोसा अल्लाह पर ओके जी और आदिल हुसैन हमारे साथ मौजूद है बहुत शुक्रिया थैंक यू अच्छा स्मार्टो गोपांग हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम आप हमें कंपर से सुन रहे कहते हैं अभी पेपर करके आया हूँ और आपका शो सुन रहा हूँ वेरी नाइस थैंक यू जी थैंक यू और अब्दुल रजाक जरदारी भाई हमें सुन रहे हैं और अहमद हालार हमारे साथ मौजूद है बहुत शुक्रिया अच्छा हजार भाई केड़ो गानो तमा बुधंदा पर हाने खैर नई फरमाइश के चोते लिस्ट फुल थी चुकी है वरी मेरी तव गाना बुधा सुबह तुम मुख्य मोकल डी न

चाचा खालिद बिल्कुल दुआ करेंगे आपका, मैंने कमेंट देख लिया था, परेशान ना हो आप, खूब सारी दुआ है। अच्छा अरिबा कहती हूँ, ओ बाजी जवाब है, मैं अपनी प्यारी दिलबर दोस्त भाभी इरम पर भरोसा करती हूँ और प्यारी भाभी इरम की। अच्छा चलें, अच्छी बात है माशा, या मोहब्बत ताजी कायम दायम रहे सैया।

के सुना प्रोग्राम में तव्हांखे खूबसूरती जो ॻाल्हियूं ॿुधाईंदी आहियां ऐं तव्हांखां मालूम बि कंदा आहियो त तव्हांजे कहिड़े कहिड़े सिटी में कहिड़े कहिड़े शहर में कहिड़े कहिड़े ॻोठ में जेका आहिनि हीअ प्रोडक्ट अवेलेबल थिया आहिनि ऐं हिननि प्रोडक्ट में शामिल आहे वाइट एज जा प्रोडक्ट आहिनि जनाब जेके खोड़ सारा प्रोडक्ट आहिनि असां गॾोगॾु डी स्किन जा प्रोडक्ट आहिनि सो अगरि तव्हां वाइट एज जा प्रोडक्ट इस्तेमालु करणु चाहियो था या फिर तव्हां इस्तेमालु कयो पिया या तव्हां इरादो कयो आहे ख़ाली त तव्हां बिल्कुलु पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल करायो उन खां अलावा वाइट एज जी लवली क्रीम त तव्हां सभु लाज़मी लॻाइजो ठीक आहे वाइट एज जी जेका लवली क्रीम अथव न इहा सफ़ा ज़बरदस्त क्वालिटी जी प्रोडक्ट अथव सो तव्हां ट्राए करे ॾिसजो इहे पर्सनली मां बि इस्तेमालु कंदी आहियां जेके ख़ासि करे माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिंखे कोई कमु हूंदो आहे यानी कि हू ॿाहिरि निकिरंदा आहिनि जॉब कंदा आहिनि या फिर पढ़ंदा आहिनि स्कूल वञो था कॉलेज वञो था या फिर तव्हां ऑफिस वञो था त अहिड़ी सिचुएशन में तव्हांखे जेको आहे न अहिड़ो कोई प्रोडक्ट खपंदो आहे जेको तव्हांजी स्किन खे ख़ूबसूरत बि बणाए ऐं तव्हांजी स्किन जी हिफ़ाज़त बि करे त उन में जनाब वाइट एज जी लवली क्रीम बेस्ट आहे सो तव्हां वाइट एज जी लवली क्रीम लाज़मी ट्राए करे ॾिसजो मां पाण इस्तेमालु कंदी आहियां सो तव्हांखे ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलंदा जनाब ट्राए करे ॾिसजो मज़ो न अचे पैसा वापसि मज़ो अची वेंदो ओके सो लाज़मी लॻाइजो उन खां अलावा वाइट एज जा फेस वॉश आहे ऐं सोप आहे तव्हां फेस वॉश लॻाइण वारा माण्हू आहे त तव्हां फेस वॉश लॻायो अगरि तव्हां साबुण लॻाइण वारा माण्हू आहे त तव्हां साबुण लॻायो बाबा ॻाल्हि एतिरी आहे सम्झो छो न तव्हां

आज इमरान अली उज्जैन हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमें मोरो से सुन रहे हैं, शायद आपको वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया। ओके जी, शमन का गाना भी लिस्ट में मौजूद था, डाडो बल्लू गाडो।

भी बहुत ही प्यारा गाना आप एंजॉय कर रहे हो, साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम सुरजानी, क्या हाल है, मैं भी आपके साथ साथ हूं, नाइस यो, सलाम टू नदिली एंड ऑल क्यूट लड़कियां। ओके जी, वालेकुम अस्सलाम सबकी जानिब से, और हमारी लुबी हमारे साथ मौजूद है, लुबी वेलकम करती हैं आपको। और इसके अलावा ये नदिली कहां है वैसे? अच्छा, वफा शहजादो मक्सी भाई हमें सुन रहे हैं लाड़काना से, वेलकम कहते हैं जी प्यारे भाई को। शहबाज भी हमारे साथ मौजूद है, हेलो शहबाज।

गाना भला लाया है। अच्छा जयपाल भाई कहते हैं कि हम लवली क्रीम जरूर यूज करेंगे, डेफिनेटली एग्री हैं। मैंने सब दोस्तों को रात को कहा था मैं यूज करूंगा जनाब अदी जी। ओके थैंक यू। ओके बिल्कुल जयपाल भाई, लवली क्रीम जो है ना वाइट एज की, ये तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। लड़के लड़कियां सभी लगा रहे हैं, खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। आई जनाब ही डाटो भलो प्रोडक्ट था, बस मतलब जो चंदा है ना इलाइन गालन जी नंढड़ी गाल सफा भलो प्रोडक्ट है, सब लगायो सही आई। तो इजिली कहें भी दुकानदार वहीं वी सो था चो बाबा वाइट एज की लवली क्रीम जो असा वाइट एज की लवली क्रीम वो या वरी तां यो भी चेजो हुआ लवली क्रीम दियो जे अंदर सनस्क्रीन शामिल आए सही आ को दुकान वारो समझी वेंदो त केडी शी वठण आया कुछ असा जा लिसनर थोड़ा मासूम हुंदा है सो जे की मासूम लिसनर उनन जे लाए यो या त तमा वाइट एज की लवली क्रीम वठो आई सो वा क्रीम जो असा के लवली क्रीम जे अंदर सनस्क्रीन शामिल आए सही आ को तां के आराम सा मिली वे। अगर नथी मिले तो उनन जे लाए तमा के नंबर बुधायो आ जे ती तमा राबतो कंदो पर कंदा वन्यो पया सही आ।

अच्छा हिदायत ना, ऐसी बात नहीं है, मैं भी लगाती हूँ वाइट एज की लवली क्रीम। अल्लाह सच्ची बुझाया। अमानुल्लाह टगड़ हमारे साथ मौजूद है। हेलो, गुलाम अकबर खास के लिए।

हाँ जी, ये भी बात है. अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल जयपाल भाई, आप जाइए, अच्छे से ट्रैवल कीजिए, एंजॉय कीजिएगा, और वाइट हेयर्स के प्रोडक्ट भी जरूर परचेज करके जाइएगा. सभी की विराई दियो बाबा, तोहफा दियो, तोहफे देने से मोहब्बत वधंदी अथव. सो गिफ्ट कयो पंहिंजे प्यारनि खे, सोणनि खे, जीअं अञा वधीक तव्हां सोणो थींदे ॾिसो. सही आहे न? मां कोशिशि कंदी आहियां प्रोग्राम में इलाही सिंधी ॻाल्हायां.

ज्वेलरी खां खालिक लाश आ रही है दी प्रोग्राम बुधा पयो चाय भी पियां पयो वाह वाह वाह वाह एंजॉय कयो एंजॉय कयो हां चाचा ये तां बिल्कुल सही गाल कई अल्लाह

0: हाय हाय अमानुल्लाह टगर भाई, आपको गाना पसंद आया, बहुत शुक्रिया। अब आप व्हाइट एज के प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करके देखिएगा और डी स्किन के प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करके देखिएगा। पांच प्यारन के मशवरो जो तो हु हाणे ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर जेके मार्केट में अवेलेबल आहे आई जेके तवाजे खूबसूरती के वधाइन भी पया। ठीक है, इमरान अली उजन भास से अगर मौजूद आए। हेलो
1: जी शादिया।
0: अच्छा मु समझो सब गाना भला भला हलाया था, हम लास्ट में एकड़ो तवा के सैड गानो पे बुधराइंदा सी। सो ही सॉन्ग डाडो भलो आए
1: जे थी न सखा तमाफ कजा।
0: ही गानो नन के डेडिकेट जेके दुख वाला गाना बुधण पसंद करना है। ठीक है।

राजेपाल भा तव्हांजो मोहबत अलाए टोक था कयो अलाए तारीफ़ था कयो कॾहिं कॾहिं ॻाल्हि थोरी सम्झ में न ईंदी न न अॼु चाचे फरमाइश कोन कई हुई मां पाण इहो सोचां पई अॼु चाचे फरमाइश छो नाहे कई पर असांजी परंपरा आहे न प्रोग्राम जी लास्ट में हिकिड़ो सैड गानो हलाईंदा आहियूं सो बिल्कुलु उहे प्रोग्राम तव्हां ॿुधो वाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो जेको डेली तव्हां ॿुधंदा आहियो 1 बजे खां 3 बजे ताईं तव्हांजो असांजो साथ हूंदो आहे प्रोग्राम में ऐं रोज़ाना तव्हांखे ॿुधाईंदा आहियूं वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट जे बारे में डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे बारे में ताकी तव्हांखे इहा ख़बर पवे त बाबा मार्केट में हाणे हीउ प्रोडक्ट बि अची विया आहिनि तव्हांखे हाणे कहिड़ा प्रोडक्ट इस्तेमालु करणा आहिनि

अॼु सॼे प्रोग्राम में खिलायो आहे, सो दिलि चयो लास्ट में तव्हांखे रोआ ॾींदी वञा. सही आहे, सो वरी इनशाला तव्हां सां मुलाक़ात मुंहिंजी सेटरडे ते थींदी. सो पंहिंजो लाइ सॼो ख़्यालु रखंदा, ऐं किथे का ग़लती थी हुजे त मां माज़रत कयां पई. सो मोकिलाणी नाहे बाबू सिन सलामत सां सलामत. अलाह हाफ़िज़, बाय बाय, लव यू ऑल एंड जय.

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़
3: पिनकी जांच दौरान मंशियात बाबति समूरी डेती लिथी ऑनलाइन करण जो एतराफ़ कयो पुलिस पिनकीअ जे बैंक अकाउंट ऐं ऑनलाइन ट्रांज़ेक्शन जा तफ़सील बि हासिल करे वरिता अनमोल उर्फ़ पिनकी पुलिस खे जांच दौरान ॿुधायो आहे त संदसि गैंग कराची में माहवार 2 करोड़नि खां वधीक जी मंशियात विकिरो कंदी हुई लाहौर खां मंशियात जी सप्लाई जे लाइ इंटरसिटी बसुनि जो इस्तेमालु कयो वेंदो हो ऑफिसर्स खे बि करोड़ रुपया रिश्वत ॾिनी वेंदी हुई

कराची में मंशियात विकिरो कंदड़ औरत जी गिरफ्तारी थे इदारन जी साराह थियण घुर्जे कोताहिन जी भली निशानदेही कयो पर सुठे कम जी तारीफ़ भी थियण घुर्जे। सिंध जे सीनियर वज़ीर शहज़ीर इनाम मेमन चयो आहे त मंशियात विकिरो कंदड़ औरत खे बिना हथकड़ी अदालत में पेश कंदड़ अहलकारनि खे मुअतल कयो वियो आहे। सिंध में अमन अमान जी सूरतहाल बि बहितर आहे। समूरा हाईवेज महफ़ूज़ आहिनि। सूबे में सनत लॻाइण जे लाइ हुकूमत ज़मीन बि मुफ़्त में ॾेई रही आहे। शाहराह भुटो बि हलंदड़ महीने खोली वेंदी। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी खिलाफ़ पंजाब पुलिस बि जांच शुरू करे छॾी। सीसीटीवी अनमोल उर्फ पिंकीअ जे मुड़ुसु रिटायर्ड इंस्पेक्टर खे जांच लाइ तलब करे वरितो। पंजाब पुलिस जे ज़रिए मूजिबि पिंकी वारे मामले जी जांच सीसीटीवी करे रही आहे। पिंकीअ खे कराची खां लाहौर बि आणे सघे थो। एटमी असासा अगराई जे लाइ न पर मुल्क जे दिफ़ा जे लाइ आहिनि। हकवारी जंग में दुश्मन पाक फ़ौज जो सेखारियल सबक समूरी जमार यादि रखंदो। काबीना इजलास खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो त शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुतो एटमी प्रोग्राम शुरू कयो ऐं नवाज़ शरीफ़ मुकमल कयो। दुनिया पाकिस्तान खे ज़िमेवार एटमी ताक़त तौरु सुञाणे थी। हुकूमत अवाम खे रिलीफ फराहम करण जे लाइ समूरा वसीला क़तब आणे रही आहे। हकवारी जंग में कामयाबी जो ॾिहाड़ो भरपूर जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो वियो। सहकार में फ़ाइदो ऐं छिकतार सां नुक़सान थींदो आहे। चीनी सदर शी जिनपिंग अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खे मुख़ालिफ़ बदिरां भाईवार थियण जो मशवरो ॾेई छॾियो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी चीनी सदर शी जिनपिंग सां मुलाक़ात। शी जिनपिंग सदर ट्रंप खे ताइवान बाबति ख़बरदार कंदे चयो त मामले खे दुरुस्त नमूने न संभालियो वियो त लाॻापा तकरार तरफ़ वधी सघनि था। आलमी बहराननि जो हल रुॻो सिफारतकारी ऐं ॻाल्हियूं आहिनि। सदर ट्रंप चीनी सदर सां मुलाक़ात खे कामयाब करार ॾींदे चयो आहे त बीजिंग ऐं वॉशिंगटन जा लाॻापा तारीख़ी बुलंदियुनि तरफ़ वञण वारा आहिनि। चीनी ऐं अमेरिकी सदरनि में मुलाक़ात तक़रीबन 2 कलाक जारी रही। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान सां जंग दौरान गॾियल अरब इमारतुनि जो ॻुझो दौरो कयो हो। परॾेही ख़बरू इदारे जी दावा इसराइली वज़ीर आज़म जो ऑफिस नेतन्याहू जे यूएई जे ॻुझे दौरे जी तस्दीक कंदे चयो आहे त नेतन्याहू ईरान ख़िलाफ़ जंग दौरान गॾियल अरब इमारतुनि वियो हो ऐं हुन यूएई जे सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान सां बि मुलाक़ात कई हुई। यूएई इसराइली वज़ीर आज़म जी गॾियल अरब इमारतुनि जे ॻुझे दौरे जी तरदीद करे छॾी। परॾेही वज़ारत मूजिबि इसराइल सां लाॻापा इब्राहिमी मुआहिदे तहत शफ़ाफ़ ऐं ऐलानिया आहिनि जिन में का बि ॻुझी मुलाक़ात ऐं राब्ता शामिल नाहिनि। ईरान जंग दौरान इसराइली वज़ीर आज़म गॾियल अरब इमारतुनि जो दौरो नाहे कयो।

ईरान के केर भी शिकस्त नथो ॾेई सघे। तहरान आज़ादी जे दिफ़ा जे लाइ मुकमल ताक़त सां विढ़ण जे लाइ तयारु आहे। नई दिल्लीअ में ब्रिक्स परॾेही वज़ीरनि जे इजलास खे ख़िताब कंदे ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त ॿिनि सालनि दौरान ईरान खे अमेरिका ऐं इसराइल जे ॿिनि वहशियाननि हमलनि खे मुंहुं ॾियणो पियो आहे। ईरानी अवाम शदीद बमबारी बावजूदि साबित क़दम रहियो। ईरान क़ौम खे धमकी या दबाउ वारो नथो कंदी, मोहबत जो जवाब ई मोहबत सां ॾींदी। अमेरिकी सेनेट मां सदर ट्रंप जा ईरान जंग बाबति इख़्तियार महदूद करण वारो ठहराउ हिकु वोट तां रद्द। सदर ट्रंप जा इख़्तियार महदूद करण वारे ठहराउ जी हिमायत में 49 ऐं मुखालिफ़त में 50 वोट्स पिया। सेनेटर जेफ बर्कले जे ठहराउ जी टिनि रिपब्लिकन सेनेटर्स पारां बि हिमायत कई वई।

0: ऐं कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।

0: It's 3:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे. जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे.
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे.
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम.

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: हलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-801।
1: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569-0300-3855-69।

वफाकी हुकूमत 28 आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए कोशिशों तेज कर छी। 28 आईनी तरमीम जहा 3-4 मुसविदा पीपल्स पार्टी हवाले। 28 आईनी तरमीम से मुशावरत के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सदारत हेठ पीपल्स पार्टी की पार्लियामानी पार्टी जो इजलास। आईनी तरमीम बाबत हुकूमती मुसविदे से मुशावरत। जरियन जो चवण है वफाकी हुकूमत के तजवीज़ कल आईनी मुसविदे में NFC अवार्ड कैनाल मनसूबो ए BISP सूबन हवाले करा नुकता शामिल आहिनि।

सहकार में फ़ाइदो ऐं छिकताण सां नुक़सान थींदो आहे। चीनी सदर शी जिनपिंग अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खे मुख़ालिफ़ बदिरां भाईवार थियण जो मशवरो ॾेई छॾियो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी चीनी सदर शी जिनपिंग सां मुलाक़ात। शी जिनपिंग सदर ट्रंप खे ताइवान बाबति ख़बरदार कंदे चयो त मामले खे दुरुस्त नमूने न संभालियो वियो त लाॻापा टकराउ तरफ़ वधी सघनि था। आलमी बहरान जो हल रुगो सिफारतकारी ऐं ॻाल्हियूं आहिनि। सदर ट्रंप चीनी सदर सां मुलाक़ात खे कामयाब करार ॾींदे चयो आहे त बीजिंग ऐं वॉशिंगटन जा लाॻापा तारीख़ी बुलंदियुनि तरफ़ वञण वारा आहिनि। चीनी अमेरिकी सदरनि में मुलाक़ात तकरीबन 2 कलाक जारी रही। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान सां जंग दौरान गॾियल अरब इमारतुनि जो ॻुझो दौरो कयो हो, पर रही ख़बरदारी जी दावा। इसराइली वज़ीर आज़म जी ऑफिस नेतन्याहू जे यूएई जे ॻुझे दौरे जी तस्दीक कंदे चयो आहे त नेतन्याहू ईरान ख़िलाफ़ जंग दौरान गॾियल अरब इमारतुनि वियो हो ऐं हुन यूएई जे सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान सां बि मुलाक़ात कई हुई। यूएई इसराइली वज़ीर आज़म जे गॾियल अरब इमारतुनि जे ॻुझे दौरे जी तरदीद करे छॾी। परदेही वज़ारत मूजिबि इसराइल सां लाॻापा इब्राहिमी मुआहिदे तहत शफ़ाफ़ ऐं ऐलानिया आहिनि, जिन में का बि ॻुझी मुलाक़ात ऐं राब्ता शामिल न आहिनि। ईरान जंग दौरान इसराइली वज़ीर आज़म गॾियल अरब इमारतुनि जो दौरो नाहे कयो। ईरान खे केर बि शिकस्त नथो ॾेई सघे। तेहरान आज़ादी जे दिफ़ा जे लाइ मुकमल ताक़त सां विढ़ण जे लाइ तयारु आहे। नई दहिलीअ में वक्स परदेही वज़ीरनि जे इजलास खे ख़िताब कंदे ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त 2 सालनि दौरान ईरान खे अमेरिका इसराइल जे 2 वहशियाननि हमलनि खे मुंहुं ॾियणो पियो आहे। ईरानी अवाम शदीद बमबारीअ बावजूद साबित क़दम रहियो। ईरानी क़ौम कंहिं धमकी या दॿाउ आदु न झुकंदी, मोहबत जो जवाब मोहबत सां ॾींदी। अमेरिकी सेनेट मां सदर ट्रंप जा ईरान जंग बाबति इख़्तियार महदूद करण वारो ठहराउ 1 वोट तां रद्द। सदर ट्रंप जा इख़्तियार महदूद करण वारे ठहराउ जी हिमायत में 49 ऐं मुख़ालिफ़त में 50 वोट्स पिया। सेनेटर जेफ मर्कले जे ठहराउ जी 3 रिपब्लिकन सेनेटर्स पारां बि हिमायत कई वई। पंजाब ज़बरदस्ती खुलियल गैरकानूनी लिंक कैनाल ज़रिए पाणीअ जी खणत वधाए छॾी। सिंध में पाणी जो बहरान संगीन थी वियो। पंजाब तौसा 5 लिंक कैनाल ज़रिए 7088 क्यूसिक्स ऐं सीजे लिंक कैनाल ज़रिए 5852 क्यूसिक्स पाणी खणणु लॻो। मामले ते सिंध जे आबपाशी खाधे जी ख़ामोशी बि सवालिया निशान बणियल। गुज़िरियल 1 हफ़्ते खां मुसलसल पाणी खणण सबबि सिंध जे बैराजेस ऐं वाहन में पाणी जी शदीद खोट पैदा थी वई। सिंध जे आबादगारनि ऐं पाणी वाहिरनि ख़दशो ज़ाहिर कयो आहे त पंजाब पारां बिना इजाज़त लिंक कैनाल खोलण सां सिंध जी ज़रई ज़मीननि खे सख़्तु नुक़सान पहुची रहियो आहे। पीअण जे पाणीअ जो बहरान बि वधी रहियो आहे। सिंध हुकूमत नोटिस वठी

0: कराची में मंशियात विकरो कंदड़ औरत जी गिरफ्तारी थे इदारन जी साराह थियण घुर्जे कोताहिन जी भली निशानदेही कयो पर सुठे कम जी तारीफ भी थियण घुर्जे। सिंध के सीनियर वजीर सैजिल इनाम मेमण चयो आहे त मंशियात विकरो कंदड़ औरत के बिना हथकड़ी अदालत में पेश कंदड़ अहलकारन के मुअत्तल कयो वियो आहे। सिंध में अमन अमान की सूरतहाल भी बेहतर है, समूरा हाईवेज महफूज आहिन, सूबे में सनत लगाने के लिए हुकूमत जमीन भी मुफ्त में दई रही है, चारा भुट्टो भी हलंदड़ महीने ही खोली वी।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखे। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का। किसानों के

0: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ 0300-3385-569 0300-3385-69
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-180-003।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीमो तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865453

0: It's 4:30 PM. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness. Chamak aise diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में. डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल

0: करने पर भी जीत सकते हो।
1: बाहर से भेजे गए रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनीया जे मुकरर केल रेट ते दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त, रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाई, आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301 91 896।

ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पंजाब जबरदस्ती खोलियल गैर कानूनी लिंक कैनाल जरिए पानी खुड़त वधाए छी। सिंध में पानी जो बहरान संगीन थी वो। पंजाब तोनसा पंजनद लिंक कैनाल जरिए 7088 क्यूसिक ए सी जी लिंक कैनाल जरिए 5852 क्यूसिक पानी खड़ लगो। मामले ते सिंध के आबपाशी खाते की खामोशी भी सवाल या निशान बणियल है। गुजरियल एक हफ्ते का मुसलसिल पानी खड़ सबब सिंध के बिराजस ए वाहन में पानी की शदीद खोट पैदा थी वही। सिंध के आबादगर ए पानी माहिरन खदशो जाहिर किया है। पंजाब पारा बिना इजाजत लिंक कैनाल खोलण से सिंध के जरिए जमीन के सख्त नुकसान पहुंची रो है। पीने के पानी जो बहरान भी वधी रो है। सिंध हुकूमत नोटिस वठे।

0: आद भट्टी शामिल।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: खुशखबरी खुशखबरी हाँ।

दोस्तो बिल्कुल रौनक महफ़िल प्रोग्राम आहे जीए एफएम नेटवर्क आहे ऐं 8 वगे ताईं अवां जो असां जो साथ अॼु बि इंशाल्लाह जारी रहणो आहे। तारीख़ जी अॼु ॻाल्हि कयां त 14 मई 2026 तारीख़ आहे ऐं ख़मीस जी शाम 7:13 टाइम थियो आहे, यानी प्रोग्राम अवां लाइव ॿुधी रहिया आहियो। तव्हांखे ख़बर आहे त स्पॉन्सरशिप खे तक़रीबन 7 महीना मुकमल थी चुका आहिनि ऐं अॼु प्रोग्राम में पाण मोकिलाईंदासीं कुझु टाइम जे लाइ। जी हा, कुझु फ़ासिलो रखंदासीं, वरी कुझु फ़ासिले खां बाद में, कुझु पास खां बाद में, कुझु ॾींहंनि खां बाद में वरी हिकिड़े नए प्रोग्राम में अवां सां मुलाक़ात कंदो। यानी अॼु प्रोग्राम आहे असांजो आख़िरी ऐं हिन आख़िरी प्रोग्राम में पाण कंदासीं तमामु घणी कचहरी। अॼु प्रोग्राम में अवां लाइव कॉल्स, मैसेज ऐं व्हाट्सएप ते वॉइस नोट्स ज़रिए धड़ाधड़ शामिल थीजो ऐं प्रोग्राम में बाक़ाइदा तौर ते पाण कचहरियूं कंदासीं। असांजी जेके ख़ूबसूरत यादियूं रहियूं आहिनि 7 महीननि में असांजे हिन प्रोग्राम में, जेका अव्हांखे ख़ूबसूरती जा राज़ ॿुधाया विया, जिन अव्हांजे कॉन्फिडेंस में इज़ाफ़ो कयो, उन ते पाण गुफ़्तगू कंदासीं ऐं गॾो गॾु अव्हांखे जेका न अच्छा गिव अवे थींदो, गिव अवे इहो थींदो त अॼु सेल्फी विनर ऑफ द वीक, बल्कि सेल्फी जेको आहे न विनर अॼु अनाउंस कंदुसि मां हिकिड़ो, जंहिंखे इनाम मिलंदो 500 रुपियनि जो कैश इनाम ऐं अव्हां खां फीडबैक बि वठंदुसि त जेको नओं प्रोग्राम आहे जेको अव्हां लाइ खणी ईंदुसि कुझु टाइम खां बाद में, अव्हां उहो कहिड़े टाइप जो प्रोग्राम ॿुधणु चाहियो पिया, या हिन प्रोग्राम जे हवाले सां जेको बि तव्हांजो फीडबैक हुजे, मुंहिंजी अखियुनि ते अॼु तव्हां खुली करे शामिल थी करे पंहिंजो फीडबैक बि ॾेई सघंदव ऐं जेको आहे त प्रोग्राम में अव्हां ॻाल्हाए बि सघंदव। ऐं हिन 7 महीननि में पाण हिन प्रोग्राम में छा सिखियोसीं, असांजी कहिड़ी ग्रूमिंग थी आहे, असां हिन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। ठीकु आहे, सो अव्हांजा वधि खां वधि वॉइस नोट्स अचनि, मैसेजेस अचनि, लाइव कॉल्स अचनि त प्रोग्राम में बाक़ाइदा तौर ते आख़िरी प्रोग्राम पाण यादगार बणाए वञे। सो असांजो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 03000113488 ऐं मैसेज ज़रिए बि तव्हां जॉइन करे सघो था। मैसेज जे लाइ SKR लिखो, स्पेस ॾियो पंहिंजो मैसेज 8881 यानी 8881 ते सेंड कयो ऐं फेसबुक ते अव्हां असांजी पेज FM88GS अखर ते ॿुधी सघो था ऐं तव्हां व्हाट्सएप ते बि साॻिए नंबर ते मूंखे जॉइन करे सघो था। हिन खां अलावा हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम वारनि जे तवनि सां ई प्रोग्राम अवां ताईं पहुचायो वञे पियो। हाणे 7 महीना हिननि स्पॉन्सरशिप कई, जस हुजे हिननि खे बि 7 महीना वॾो टाइम आहे, 7 महीना पंहिंजा ईअं गुज़री विया आहिनि जेको आहे त हेमे ब्यूटी शो में का ख़बर ई कोन पई। ऐं हिन रौनक महफ़िल में मां हमेशह इहा ॻाल्हि कंदो आहियां त यार रौनक तॾहिं ई मूंखे महसूसु थींदी आहे जॾहिं अव्हांजो साथ हूंदो आहे, अव्हांजो फीडबैक हूंदो आहे, अव्हां जूं मोहबतूं हूंदियूं आहिनि न, त इहा रौनक बाक़ाइदा तौर ते हिन रौनक में चार चंड लॻी वेंदा आहिनि। त दोस्तो बिल्कुलु अॼु बि इहा रौनक जेका इनशाला ताला बहाल रहंदी ऐं अॼु जी रौनक अञा वधीक ॿी रौनक खां डिफरेंट हूंदी। ठीकु आहे, सो दोस्तो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम वारनि खे तव्हां फीडबैक बि ॾेई सघो था। हिन जो हेल्पलाइन नंबर आहे 03671354 07। नंबर वन सेकेंड मां रिपीट कयां पियो, 03-36-71-35-407। इन नंबर ते तव्हां कॉल करे हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जे बारे में हिननि खां मालूमात वठी सघो था ऐं जी पुछी सघो था त तव्हांजे शहर जे वेझे कहिड़े स्टोर ते हेमे ब्यूटी क्रीम अवेलेबल आहे। हिननि खे इहो बि चई सघो था त बाबा छो भला 7 महीननि में थकिजी पियो ठहर त आहे। सो अव्हांजी सेल्फीज़ जेके आहिनि उहे बि तव्हां मूंखे सेंड कजो, अॼु इनशाला वेंदे वेंदे कुरानदासी कयूं वेंदुसि ऐं प्रोग्राम में जेका आहे अव्हांजी फरमाइश बि अॼु प्रोग्राम में शामिल करण जी मां भरपूर कोशिशि कंदुसि। ठीकु आहे, त प्रोग्राम जी शुरूआत में तमामु प्यारो प्यारो कलाम मुंहिंजी प्लेलिस्ट में आहे जेको मां अव्हांजे लाइ प्ले कयां पियो। अव्हांखे वंस अगेन ॿुधाईंदो हलां त अॼु जे प्रोग्राम में जेके ॻाल्हियूं पाण डिस्कस कंदासीं उहे आहिनि, अच्छा हिकु त पाण हिन ॻाल्हि ते डिस्कस कंदासीं त जेका आहिनि ख़ूबसूरत यादियूं पंहिंजूं हिन 7 महीननि में कहिड़ियूं रहियूं हिन प्रोग्राम में, गॾु गॾु जेको आहे त अव्हां हेमे ब्यूटी क्रीम जे बारे में बि फीडबैक ॾींदा। सेकेंडली तव्हांजी जेका नेचुरल ख़ूबसूरती, जेका हिननि जो मोटो हुयो हेमे नेचुरल्स वारनि जो, त तव्हांखे नेचुरल ग्लो मिले पियो, कुदरती निखार मिले पियो, उहो अव्हांजो कीअं लॻो अव्हांखे ऐं उन सां अव्हांजो कॉन्फिडेंस केतिरो बिल्डअप थियो इहो बि ॿुधाईंदो ऐं हिन प्रोग्राम ज़रिए अव्हां केतिरी लर्निंग कई ऐं अव्हांजी केतिरी ग्रूमिंग थी, इन ते बि पाण गुफ़्तगू कंदासीं। ऐं हिन प्रोग्राम में गिव अवे मां अव्हांखे कंदुसि 500 रुपियनि जो कैश इनाम प्राइज कंदुसि ऐं तव्हां जेको आहे पंहिंजो फीडबैक ॾींदो प्रोग्राम में। ठीकु आहे, त डन थी वियो, इहो असां प्रोग्राम अॼु करण वारा आहियूं। त प्रोग्राम जी शुरूआत में तमामु प्यारो प्यारो कलाम अव्हां सभिनी जे लाइ प्ले करे छॾियो आहे, तव्हां कलाम ॿुधो ऐं रौनक महफ़िल में 8 वॻे ताईं मूंसां गॾु रहिजो। वधि खां वधि तव्हांजा प्रोग्राम में फीडबैक्स मां शामिल कंदुसि त कनेक्ट रहिजो ऐं अॼु दिलि खोले करे पंहिंजा वॉइस नोट्स ऐं लाइव कॉल बि असां करे सघो था तव्हां।

0: हाण नरम चमक ऐं साफ़ जिल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जंहिं में शामिल आहे SPF 30 सिज जे नुक़सानकार किरणनि खां बचाउ लाइ कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धप्पा निशानात ख़तम करण लाइ विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐं आर्बुटिन जेके ॾियनि तव्हां जे चेहरे खे कुदरती साफ़ ऐं चमकदार ग्लो रोज़ानो इस्तेमालु करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद हर ॾींहुं हुजे हिकु नओ ग्लो हिकु नओ कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम
1: सो लिसनर्स बिल्कुल रौनक महफ़िल प्रोग्राम में बाबर शेख हवा सां गॾु आहे GAFM नेटवर्क आहे ऐं 8 वॻे ताईं अव्हां जो असांजो साथ आहे अॼु प्रोग्राम लास्ट आहे ऐं इनशाला ताला वरी नए प्रोग्राम में अव्हां सां मुलाक़ात थींदी कुझु ॾींहनि खां बाद में ठीकु आहे त दोस्तो बिल्कुलु प्रोग्राम में मां अव्हांखे जीअं ॿुधाए चुको आहियां त हिन प्रोग्राम में असां हिननि 7 महीननि में जेको आहे त कहिड़ियूं जेके आहिनि त शयूं सिखियूंसीं ऐं ग्रूमिंग कहिड़ी थी गॾो गॾु हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जे इस्तेमाल सां अव्हांखे नेचुरल ग्लो कीअं मिलियो अव्हां छा पिया सम्झो ऐं प्रोग्राम जे हवाले सां अव्हांजो जेको फीडबैक आहे तव्हां प्रोग्राम में शामिल थी ॾेई सघो था अॼु वधि खां वधि तव्हांखे मां इंक्लूड करण वारो आहियां ठीकु आहे सो हीउ चए पियो वींदड़ ख़ुशीअ ते खिलंदा विया पर पाण त रोईंदा रहिजी वियासीं खेन वराए कंध ॾिठाऊं ॾिसंदा अच्छा ॾिसंदा अच्छा अॻिते यार तव्हांजो मैसेज जेको आहे न मिसिंग पार्ट आयो आहे असां ॾिसंदा टिकंदा रहिजी वियासीं ओके अदा इमाम ॾिनो भमरो साहिबु ज़बरदस्त यार अव्हां जूं मोहबतूं ऐं तव्हां त हमेशह गॾु हूंदा आहियो प्रोग्राम में मुंहिंजे इनशाला वरी कुझु गैप खां बाद में वरी ईंदासीं पाण सो हीउ चए पियो बलोच ग्रुप नूर नबी गबोल टंडो अला यार खां अदा बाबर अव्हांजो शो नाइस आहे चवनि पिया असां हिननि फीडबैक ॾिनो आहे त सवालनि वारे सेगमेंट शामिलु कंदा कयो ऐं विनर जी फरमाइश हलायो ऐं सवाल रोज़ रखो अदा ठीकु आहे जॾहिं नेक्स्ट प्रोग्राम में ईंदुसि तव्हांजे हिन फीडबैक ते ज़रूरु गौर कंदुसि ऐं उहा अमूमन तक़रीबन मुंहिंजे हिन प्रोग्राम में सवालात जो सिलसिलो बि हूंदो आहे हिन प्रोग्राम जे ज़रिए तव्हांजी तमामु घणी नॉलेज में बि इज़ाफ़ो थियो आहे ॼाण जी खाण सेगमेंट जे थ्रू जी आहे हिकिड़ो हीउ वॉइस नोट अचो त ॿुधूं
2: बाबर साहब अस्सलामुअलैकुम वफ़ा अब्दुल वहीद जतोई केटी शाबिलो उमीद आहे त ख़ुशि हूंदो ख़ुशहालु हूंदो अॼु सम्झो सच पुछो त आख़िरी ॾींहुं आहे हेमी ब्यूटी क्रीम जे प्रोग्राम जो ॾाढो ॾुख बि थिए थो पर हाणे ज़रूरु हे हलचल जो ज़मानो आहे वरी इनशाला तव्हां त असां जुड़ियल हूंदो बाक़ी यादूं त हे हिकिड़ो अहिड़े क़िस्म जो घरु आहे हे फेम घरु आहे ॿुधूं था खोड़ सातरा त दोस्तनि कॾहिं रुसूं बि था कॾहिं खिलूं बि था कॾहिं भोग मज़ाक बि इहे बि यादिगिरियूं असांखे न विझूं भई इनशाला वरी को शो खणी ईंदव बाक़ी हाणे हेमी ब्यूटी क्रीम जो ज़िलट जर मां कूड़ न हणंदुमि मां इस्तेमालु कान कई पर हेतिरा दोस्त जेका मोट ॾियनि पिया स्लिपियूं मोकिलनि पिया त हेमी ब्यूटी क्रीम त पंहिंजो मटि पाण आहे ठीकु आहे भई अॼु असांजो अर्ज़ु आहे को असांखे मास्टर मंज़ूरु ॿुधाइजो त ॾिसो यार मुंहिंजे जूं क़ुर्बानीूं धर त थी वियमि पधड़ा थो करे कॾहिं अवेर सवेर थी वेंदी आहे धर ते बि सरडा थो करे भाउ बाबर साहिबु तव्हांखे खोड़ सारा सलाम ऐं तंहिंखां बाद में आसिफ़ चाचड़ लाड़काणे खां मुंहिंजो भाउ आहे ज़हीर में जतोई मुंहिंजो भाटियो आहे आयाज़ में जतोई ऐं हे जेको नगमो हलायो अथव इहो बि बहितरीनु आहे इनशाला काल बि मां हणंदुमि सिक भरियो सलाम वफ़ा अब्दुल वहीद जतोई पारां
1: वालेकुम असलाम अदा तव्हांजी महिरबानी भाउ प्रोग्राम में शामिलु थिया ऐं बिल्कुलु यार हिन प्रोग्राम में मूंखे इहो ई त मज़ो ईंदो आहे त काफ़ी सारा मुंहिंजा लिसनर्स अहिड़ा आहिनि जेके मूंसां रुसी वेंदा आहिनि वरी पढ़जी पवंदा आहिनि वरी मां हुननि खे पढ़चाईंदा आहियां कॾहिं हू मूंखे पढ़चाईंदा आहिनि त बिल्कुलु इहो असांजो घरु आहे प्रोग्राम जेको बि मां यार कंदो आहियां न हुन में तमामु घणो दिलि सां कंदो आहियां इन वजह सां उहो प्रोग्राम कुझु वधीक टाइम हलंदो आहे ऐं 7 महीना हली विया ऐं 7 महीना यार कीअं गुज़री विया का ख़बर कोन पई मूंखे बहरहाल अव्हां जूं मोहबतूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जो ख़बर ई न पवंदी आहे टाइम कीअं थो गुज़िरे अव्हांजो थोराए थो आहियां मां हिननि मोहबतनि जो हिकिड़ो ही वॉइस नोट
3: असां बाबा शेख साहिब कीअं आहियो तव्हां सभु ठीकु आहे अखियो त मां सफ़र ई तूं अखियुनि में आई अखियुनि खे बाबा शेख भाणी न भाई

0: ही मिंटन जो आए जेको अदि त मां के सबन जा वॉइस नोट शामिल करना है त इन जो मां प्ले कयां पे बुधो
1: अस्सलाम वालेकुम या अली मदद बाबर बा केड़ा लन खुश आयो मां उम्मीद कयांदा वा जते हुंदा खुश हुंदा ए सदा ही आबाद हुंदा मुस्कुराईंदा रहंदा बा मिल मां विलेज वांड बशा मुजी सेविका सांगे डिस्ट्रिक्ट लारकन खां अशरफ अली मिराली पियो गलायां बाजी ते ताने प्रोग्राम हेमे नेचुरल्स डायमंड गिलो ब्यूटी क्रीम वारनि तावन सां जेको हलंदो हुयो ऐं रौनक महफ़िल नालो बि तव्हां रखियसि हुन जो सो अॼु आख़िरी प्रोग्राम आहे ॾाढो ॾुखु पियो थिए सो असां अचूं पिया जेकर प्रोग्राम हले आहे ॾाढो ॿुधंदा हुआसीं सुकून मिलंदो हुयो ऐं रोज़ानो टाइम ते पाबंदी सां ॿुधंदा हुआसीं ॾाढो मज़ो ईंदो हुयो अॼु आख़िरी ॾींहुं आहे तव्हां अनाउंस कयो आहे असांखे ॾुख थो थिए त हाणे असां कंहिंजो प्रोग्राम ॿुधंदासीं कंहिं मां लुत्फ़ अंदोज़ थींदासीं ऐं कंहिं मां सुकून वठंदासीं छो त हिन में तव्हांजो आवाज़ ई अहिड़ो हुयो न कोयल जहिड़ो मिठड़ो आवाज़ु हुयो ॾाढो ख़ूबसूरत पसंदीदा आवाज़ु हुयो मूंखे न बल्कि काफ़ी दोस्त किथां किथां खां ॻाल्हाईंदा हुया सभु ईअं ई चवंदा हुआ त वाह बाबर वाह बाबर वाह सो हाणे अगरि ही असांजी आवाज़ु हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम वारा ॿुधनि पिया या ॿुधनि त उन्हनि खे असां रिक्वेस्ट आहे त प्रोग्राम ख़तमु न कनि ख़तमु थियण सां जेको आहे न असांखे ॾुख थो थिए ऐं हीअ जेका सत महीना गुज़री विया आहिनि गुज़िरियल सत महीना असां तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधोसीं ॾाढो मज़ो आयो ऐं हाणे जेकॾहिं तव्हां ख़तमु था कयो त मूंखे सम्झ में नथो अचे छा ॿुधंदासीं ऐं सत महीना ईअं गुज़री विया सत महीना काफ़ी अरसो हूंदो आहे हूअं त हाणे ईअं पियो लॻे ॼण हिकिड़ो कलाकु गुज़रियो सो तव्हांजो असांखे प्यार ई एतिरो मिलियो ऐं ॾाढो असां जेको आहे त तव्हांखे भाईंदा आहियूं ऐं तव्हां असांखे वध खां वधि इज़त ॾिनी ॾाढो सुकून पियो मिले असांखे ऐं आख़िरी प्रोग्राम ॾुख थो थिए सो हाणे बाबर भाउ तव्हां त मोकिलणी कयो पिया पर असां बि तव्हांखे चवंदा जेकर न वञो पर मां इहो बि सम्झां थो स्पॉन्सर छो आहे छो त ईअं त मां नथो हली सघंदो हुन खां सवाइ हुनजे तावन खां सवाइ न हली सघंदो तव्हांजी ॻाल्हि बि सही आहे सो असां रिक्वेस्ट कंदासीं इन प्रोग्राम में अॼु तव्हां चयो आहे तव्हांजी फरमाइश बि आहे ऐं असांखे अॼु शमन अली मिराली साहिब जे आवाज़ में न हीउ कलाम ॿुधाइजो हीअ हसी ज़िंदगी ईअं गुज़री वई का ख़बर ई न पई सो जीअं हीअ सत महीना गुज़री विया ख़बर कान पई तीअं उहे बि शमन अली मिराली लफ़्ज़ सही आहिनि ॾाढो हुन बि सही ॿुधायो आहे सो अॼु महिरबानी कजो इहो ॿुधाइजो ऐं आख़िरी सेल्फी अॼु सेंड करे रहियो आहियां सो हाणे मुंहिंजा भाइरनि इम्तियाज़ अली बंगलाणी न उनखे बि खोड़ सारा सलाम हुजनि छो त आख़िरी प्रोग्राम आहे वरी अलाए छा थिए ऐं हिन महिल तव्हांजे प्रोग्राम ॿुधनि पिया अब्दुल जबार मिराली तनवीर मिराली साजन मिराली ऐं असां सभिनी तरफ़ां भा अलविदाई ऐं या अली मदद
0: माला अली मदद साईं तव्हांजी महिरबानी मिराली साहब अवांजी मोहबतूं ऐं तव्हांजो इहो फीडबैक यार सच पुछो दिलि ते लॻो आहे ऐं दिलि न पई थिए प्रोग्राम मां वेंदे पर छा हिते यार वञिणो थो पवे वरी वेंदासीं वरी मोटी ईंदासीं इनशाला पर इहो जेको तव्हां फीडबैक ॾिनो त अलाए त छो स्पॉन्सरशिप ख़तमु इहो फीडबैक तव्हां हिननि जी हेल्पलाइन नंबर ते कॉल करे हिननि खे ॾेई सघो था नंबर आहे 0336-7135-407 जी हा 0336-7135-407 ऐं यार ख़बर आहे तव्हांखे जॾहिं मां अॼु इहो थोरो प्रोग्राम जी तयारी पिए कई त सोचां पियो त यार सत महीना प्रोग्राम किथे आहे ख़बर ई न पई कल्ह जी ॻाल्हि पई लॻे ॾिसो रमज़ान जे मुबारक जे महीने में पाण ई प्रोग्राम हलायोसीं उन खां पहिरियां बि महीना ई हली चुको कीअं ज़िंदगी गुज़रे पई यार कुझु ख़बर कोन पई पवे इन जे लाइ यार जेतिरो थी सघे न तव्हां जेको आहे न उहे कम कयो जेके असांजी दुनिया ऐं आख़िरत ॿिन्हिनि में कमु अचनि ज़िंदगी ईअं ई सिमिलरली गुज़री वेंदी हाणे सत महीना मतिलबु अगरि असां सत महीना चऊं न त इहे सोच में अचनि यार वॾो टाइम आहे पर ईअं पई लॻे जीअं हींअर मिराली साहब चयो यार कल्ह जी ॻाल्हि आहे कलाकु लॻो ॾियणु कलाकु गुज़री वियो त यार ॿेली जेका आहे न कोशिशि कयो सिधी वाट ते बि हलूं असां ऐं उहे मतिलबु कमु कयूं अला पाक जे ॿुधायल उन रस्ते ते हलूं जंहिंसां असांजो ही जान ऐं मथियो जान बि ॿई असांजा अहिड़ा हुजनि जो अला साईं असांखे पंहिंजे अमान में रखे ठीकु आहे ऐं तव्हांखे दुआउनि जे लाइ बि मां ज़रूरु चवंदुसि त मुंहिंजे लाइ दुआ बि ज़रूरु कंदा कयूं मां बि अव्हांजे लाइ दुआ हूंदो आहियां ऐं सेकेंडली प्रोग्राम में ॾिसो परफेक्ट जेका आहे न अव्हांखे का बि शइ जेका आहे न मां सम्झां पियो हिन दुनिया में नथी मिली सघे परफेक्ट शइ जेका आहे न अगरि असां प्रोग्राम में तव्हां परफेक्शन ॻोल्हियो त उहा ॾाढी ॾुखी हूंदी आहे हाणे काफ़ी सारा लिसनर्स अहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिंजी फरमाइश पूरी नथी सघंदी हुजे बोलो साहब मुंहिंजे ख़्याल में पनवाखिल खां हिकु बोला बिरादरी ईंदी आहे हमेशह मूंखे मयार ॾींदा आहिनि यार बाबर हैफ हुजे गानो न हलाई असांजो त बाबा हुननि खां बि माज़रत आहियां ऐं जंहिंजा गाना न हलाए सघियुसि जंहिंजा वॉइस नोट्स शामिलु न करे सघियुसि उन्हनि खां बि माज़रत खां आहियां त दिलि ते न खणिजो प्रोग्राम जो हिसो आहे प्रोग्राम में कलाक हूंदो आहे, कलाकनि में बि अगरि मां गाने जो टाइम कढी वठां तमामु घटि टाइम हूंदो आहे, उन टाइम में मूंखे मैनेज करणो हूंदो आहे, त इन लाइ उहे ॻाल्हियूं पंहिंजी जॻह ते. पर जेका इन प्रोग्राम इलाही कुझु पाण सिखियोसीं बि, जेकी ॼाण जी खां सेगमेंट मूं रखियो ई इन लाइ हुयो त प्रोग्राम में असां एंटरटेनमेंट सां गॾोगॾु इंफॉर्मेशन बि तमामु घणी पिरायूं ऐं तमामु घणी असांखे इंफॉर्मेशन मिली, यकीन तव्हांजी नॉलेज में बि.

0: हाँ नरम चमक आई साफ जल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जिसमें शामिल आहे एसपीएफ 30 सिज जे नुकसानकार किरणन खा बचा लाए कोजिक एसिड आई जल्द मां दाग धब्बा निशानात खत्म कर लाए विटामिन सी ग्लूटाथायोन आई आर्बुटिन जेके डियन तवहां जे चेहरे के कुदरती साफ आई चमकदार ग्लो रोजानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम आई हासिल करियो नो ग्लो नो एतमाद हर डी हुजे एक नो ग्लो एक नो कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम
1: जी दोस्तों रौनक महफिल प्रोग्राम में बाबर शेख अवासा गड है जीए एफएम नेटवर्क आई 8 वगे ताई अहां जो असन जो साथ आए 20 मिनट बचे हैं यार वरी हलिया वेंदे वरी मोटी इंदे के नए प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला तुम जो प्यारा प्यारा लिसनर्स मूसा गड हों तो इंशाल्लाह प्रोग्राम में अन्या डबल ट्रिपल रौनकू थी रही ठीक है कुछ मैसेजेस हैं 888 से चनेसर सोलंगी मोहम्मद सावल सोलंगी मोहम्मद आमिर सोलंगी सैफुल्ला सोलंगी गोठ वासन दल लग मीरपुर खास का अला पाक अवे खुश करे अदा तहबानी सैम टू यू बलोच ग्रुप नूर नबी गबोल टंडो अला यार खां बाबर अवज शो नाइस आए अच्छा ये अगाने वो मैसेज है इट्स ओके गोठ हाजी गुलाम खास के लिए लगे झंडू मरी खां कुर्बान खास के लिए यार कुर्बान छाल अच्छा गुलाब लगारी गोठ बशाम खान रिंद से गाजी खान रिंद चाचा मंठार रिंद रिजवान अली रिंद फैजान अली रिंद शहजाद अली रिंद छोटी कौनैन जहरा भाई आपका शो क्यों बंद कर रहे हो छोटी कौनैन अच्छा गुलाब लगारी साहब साईं स्पॉन्सर शो आहे सत महीना थी विया आहिनि हाणे स्पॉन्सरशिप वारा थकिजी पिया आहिनि चवंदा हाणे साई पटियूं वधीक तव्हां हिन जी हेल्पलाइन नंबर ते कॉल करे इन्हनि खां पुछी सघो था 0336-713-5407 ज्वेलरी खां ख़ालिक लाशारीअ त बाबर आख़िरी शो में फौजिया सूमरो त हलायो हाज़ुर भाउ अॼु कोशिशि कंदो तव्हां जूं फरमाइशूं प्रोग्राम में शामिल हिकिड़ो ही वॉइस नोट आहे छो त ॿुधूं पिया
2: बाबर जानी अस्सलाम अलैकुम या लीले सलामत सर कहिड़ा हाल ख़ुशि आहियो त बि सही आहे मां ज़वार मोहम्मद बचल शंबाणी नारो आर्टिक 186 खां ऐं तव्हांजे हेमे ब्यूटी प्रोग्राम शो में आख़िरी सम्झे तव्हांजो वॉइस कॉल मुंहिंजो अचे पियो ऐं कुझु तव्हांखे इहो बि चऊं था वियो इनशाला ताला नओं प्रोग्राम वरी तव्हां खणी ईंदो असां उमेदु इहा ई आहे असां तव्हां में सर दोस्त लाइ इहे तव्हां रिक्वेस्ट कनि था पिया त प्रोग्राम छॾे न वञो ऐं कुझु दोस्तनि खे यादि करणु चाहियां थो सर अली मोहम्मद बमरो इमाम लिनो मिर्क फ़क़ीर बमरो अली गोहर महर ऐं उन खां अलावा अलावर लाशारी साहब जी तबियत सही न आहे उन लाइ दुआ कजो ऐं सैद गुलाब अली शाह सैद इमदाद अली शाह इन खां अलावा जिते जिते आवाज़ वञे थो सभिनी खे मुंहिंजी तरफ़ो हथ ॿधी खोड़ सलाह सलाम इहा अली मदद सर ओके अला हाफ़िज़
1: वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद भा ज़वार तव्हांजी महिरबानी अवां जो मोहबतूं ऐं अवां जा लख थोरा अदी ज़ेबी छा पई थिए अदी ज़ेबी छा पई थिए अचो त ॿुधूं पिया
3: सलाम अदा प्रोग्राम वीआईपी नाइस जबरदस्त प्रोग्राम लाजवाब अदा नाइस मां एंजॉय थी कयां
1: ओके अदी तव्हांजी महिरबानी तव्हां एंजॉय कयो हिकिड़ो ही वॉइस नोट
4: अस्सलाम वालेकुम बाबर भा छा ख़ुशि आहे नज़ीरन मंगरियो गोठ मुरीद मंगरियो भेड़ो संगरान तमामु हिकु त ख़ुशी बि थी जो हेमे ब्यूटी क्रीम वारनि जी लाजवाब हिकिड़ी क्रीम हुई जेका असांजे चेहरे खे ख़ूबसूरत पई बणाए पर अॼु जेका तव्हां ॻाल्हि कई हिन में ॾुख बि थियो पर का ॻाल्हि कोन्हे छो जो वरी इनशाला गॾियल आहियूं पाण परे हिक ॿिए खां न आहियूं पर हाणे अॼु दिलि थी चवे त तव्हांजो प्रोग्राम बि आख़िरी आहे ऐं कलाम बि ॿुधरायो अनवर विस्तरे जो अथव छा

0: लॻे, महिरबानी करे इहो ॿुधाईंदा त तव्हांजा अहसान थींदा। ओके, ख़ुदा हाफ़िज़। सिन सलामत, साथ सलामत, हमेशह ख़ुशि हूंदव। भाउर भाई, अलाह ख़ुशि रखेव, को ॾुखियो ॾींहुं न आणेव, ऐं महकंदा रहो, गुलनि वांगुरु ख़ुशबूदार हुजो। ओके, ख़ुदा हाफ़िज़।
1: अलाह हाफ़िज़। सदा तव्हांजी महिरबानी। बाक़ी यार, वाह जो ॻायो अथव गानो, आवाज़ माशाल्लाह अदमो तव्हांजो फील कयो आहे ज़बरदस्त। बहिरहाल, असां हिन प्रोग्राम में ॻाइण वॼाइण सेगमेंट में थोरो घणो ॻाइण बि सिखियोसीं, या न ईअं आहे न? एम आई राइट और नॉट, तव्हां मूंखे ॿुधायो। अच्छा, हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम वारनि इहा दावा कई आहे त हिननि जी जेका प्रोडक्ट आहे न, इन में SPF 30, कॉजिक एसिड, ग्लूटाथायोन, वाइटामिन सी, आर्बुटीन ऐं ॿिया केतिरा ही नेचुरल इनग्रीडियंट्स शामिल आहिनि, जेके अव्हां जे चेहरे जी स्किन खे बिल्कुलु 24 जे चंड जीअं चमकाए सघनि पिया। तव्हां हिननि जी प्रोडक्ट आज़माए करे फीडबैक ॾेई सघो था, ऐं हिननि जे हेल्पलाइन नंबर ते बि कॉल कंदव। हिननि जो नंबर आहे 0336-7135-407। जी हा, 0336-7135-407। ठीकु आहे, सो हिकिड़ो ही वॉइस नोट आहे, पोइ मां लाइव कॉलर्स खे शामिल कयां पियो, ॿुधो।
2: अस्सलामुअलैकुम बाबर भा, छा हाल आहे? ॿियो ख़ैर आहे? तव्हां शाह साहब सां हिन खां साइड एरिया खां ॻाल्हायां थो। असांजा कोई बि अॼु 8 ॾींहं 15 ॾींहं असांजो वॉइस नोट तव्हां कोई बि असांजो आन न कयो आहे। तव्हांखे भला एॾी कावड़ आहे त पोइ असांखे ॻाल्हि ॿुधायो। बाक़ी असांजा तव्हांजी इहा क्रीम कोन यूज़ था कयूं, छा आहे त तव्हां ईअं ई चओ था त असांजी क्रीम यूज़ कोई नथो करे। लेंसर जेको करे थो, हरू भरू कूड़ हणी ॻाल्हाइनि था, उन्हनि सां तूं वॉइस नोट जमा करे थो, बसि तोखे बि हैफ़ आहे यार।
1: अवा ठीकु आहे, मां अॼु तव्हांखे चयो आहे न, तव्हां खुली दिलि खुली करे ॻाल्हायो, दिलि खोले ॻाल्हायो। अदा साईं, हाणे ॻाल्हि इहा आहे त कूड़ कोई नथो हणे, मां वटि सेल्फीज़ आहिनि, इन्हनि जूं मोहबतूं आहिनि। ॾिसो, तव्हां इहा ई ॻाल्हि त फील नथा कयो न, इन ई वजह सां 7 महीना प्रोग्राम हलियो आहे ऐं तव्हांजा वॉइस नोट्स तक़रीबन रोज़ शामिलु थींदा आहिनि। मां साफ़ ज़ाहिर थिए पियो, तव्हां प्रोग्राम तवजा सां ॿुधो कोन पिया। ऐं सेकेंडली, तव्हां चयो कूड़ था हणनि, बिल्कुलु बि न। सेल्फीज़ जेके मोकिलनि पिया ऐं सेल्फी सां गॾो गॾु जेको फीडबैक ॾियनि पिया आहिनि, उहो बिल्कुलु सही आहे। मां कंहिंखे ज़ोर बि न ॾिनो आहे, न ई मुंहिंजी क्रीम आहे। जीअं तव्हां ॻाल्हि कई अथई तव्हांजी क्रीम न पवो, मुंहिंजी क्रीम कोन्हे, स्पॉन्सर शो आहे हेमे नेचुरल्स वारनि जी आहे। मां तव्हांखे जस्ट उन्हनि जो पैगाम कन्वे कंदो आहियां ऐं पोइ चवंदो आहियां, यार तव्हांजी मर्ज़ी आहे, ठीकु आहे, तव्हां इस्तेमालु कयो या न। बाक़ी फीडबैक ॾियण जे लाइ मां तव्हांखे ज़रूरु चवंदो आहियां जेको तव्हां ॾींदा आहियो। ऐं सेल्फीज़ में जेके हेमे ब्यूटी क्रीम यूज़र आहिनि, हथ में हेमे ब्यूटी क्रीम हुननि जी हूंदी आहे, तव्हां उन्हनि खे कूड़ो कीअं था थी चई सघो? साईं, तव्हां वेझो हुजो आहे, तव्हांखे मां उन्हनि जूं फोटू ॾेखारियां, पोइ तव्हां चवां हा यार मां ग़लति आहियां। बहरहाल, इट्स ओके, तव्हां फीडबैक ॾियो पिया, मूंखे ख़ुशी थिए पई। ऐं अॼु आख़िरी प्रोग्राम आहे, मां सभिनि जो फीडबैक मुंहिंजी अखियुनि ते, ठीकु आहे। हिकिड़ो ई वॉइस नोट।
3: सलाम अलैकुम अदर्श, हाल वाला ख़ैर ख़ुशि आहियो? अदम ऐं लांगा सऊदी अरब खां तव्हां वञो था, ॾुख थिए थो छो त मां बि जॾहिं कराची में कमु कयो 3 महीननि ताईं उहो रखंदा हुया, जॾहिं आख़िरी ॾींहुं थिए थो न त एॾो ॾुख थो थिए, उहो ॾुख मां सम्झी सघां थो। इन जे करे त असां परदेस में वसाए वियोसीं। इनशा अलाह ख़ैर कंदो, मोटी ईंदव जल्दी, ठीकु आहे।
1: चलो, वालेकुम असलाम यार। ईअं ई आहे, ॾुख थींदो आहे, यकीन पुछो, मूंखे बि अॼु ॾाढो ॾुख थिए पियो। ऐं 7 महीननि जो टाइम आहे वॾो तव्हां सां जेको गॾु गुज़ारियो इन प्रोग्राम जे थ्रू, ॾाढी ख़ुशी थी। ऐं मूंखे अलहमदिल्ला फ़ख्रु बि आहे त मुंहिंजा प्यारा लिसनर्स अहिड़ा हूंदा आहिनि जिन सां अटैचमेंट थी वेंदी आहे, जीअं तव्हां सां अटैचमेंट थी वई आहे। ऐं बाक़ाइदा तौर ते कुझु लिसनर्स अहिड़ा आहिनि जेके प्रोग्राम में शामिलु थींदा आहिनि रेगुलर, उन्हनि सां बाक़ाइदा तौर ते ॼण 32 दिलियूं लॻी वियूं आहिनि। अमां जी मोहबतूं अलाह सां ई कंदो, इहे क़ाइमु दायम रहंदियूं। हिकिड़ो ही वॉइस नोट आहे, पोइ मां गाने जी तरफ़ हलां पियो।
4: ख़बर साईं, घोट कैंची सियाल खां हुसैन भग सियाल, अवां जो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे रौनक महफ़िल। आउं हिकिड़ो अर्ज़ु रखंदुसि त ही विछोड़ो मारे छॾींदो

0: साईं अलहमदिल्ला तव्हांखे मां फीडबैक ॾींदुमि। तव्हां जेके बि महीना प्रोग्राम कयो बहितरीन अंदाज़ में कयो ऐं असां तव्हांखे कॾहिं बि विसारे नथा सघूं ऐं तव्हांखे दुआ ॾियूं था सदाई शाद हुजो आबाद हुजो ऐं अहिड़ो ई प्रोग्राम वरी नओं असां लाइ खणी ईंदा ऐं असांखे इंटरनेट ॾींदा ऐं असांजी दिलि तव्हां ख़ुशि कंदा। साईं वॾी महिरबानी, अलाह साईं तव्हांखे आबाद करे ऐं तव्हांजी पूरी टीम खे अलाह ख़ुशि करे। थैंक्यू।
1: आमीन सियाल साहब, तव्हांजी महिरबानी यार। मां थोराए थो अवां जी इन्हनि मोहबतुनि जो, अवां जा इहे थोरा मूं ते आहिनि ऐं अवां जी इहे मोहबतूं मूंखे ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि। अचो त यार हिकिड़ो गानो था ॿुधूं, तमामु प्यारो गानो आहे, शैनी लाली जी आवाज़ में तमामु प्यारा ॿोल आहिनि। अचो त ॿुधूं, इंजॉय कयूं गानो ॿुधो जेसिताईं मां अवां जी सेल्फी जा नाला नोट करे वठां, ठीकु आहे।

0: جی دوستو بالکل پروگرام رونق محفل میں بابر شیخ ہوا سا گڈ جی اے ایف ایم نیٹورک ست لگی ٹے ونجا منٹ ٹائم تھو آئے ऐं प्रोग्राम जी आख़िरी लिंक आहे ऐं अव्हां जो मां थोरायतो आहियां वंस अगेन जिन सत महीना बाक़ाइदा तौर ते प्रोग्राम में मूंसां गॾु हलिया ऐं प्रोग्राम में पंहिंजो साथ निभायो, प्रोग्राम में पंहिंजी मुहबतूं ॾिनियूं, स्पेशली जिन सेल्फीज़ मोकिलियूं यार उन्हनि जो त मां हथ ॿधी शुक्रगुज़ार बि आहियां ऐं शुक्रगुज़ारी सां गॾोगॾु हेमे नेचुरल्स वारनि खे बि थैंक यू चवणु चाहींदुसि जिन स्पॉन्सरशिप हलाई सत महीना ऐं जी ए एफ एम नेटवर्क ते बि इन्हनि मौक़ो ॾिनो मूंखे सत महीना प्रोग्राम करण जो. सो जी ए एफ एम नेटवर्क जो बि थोरायतो ऐं गॾो गॾु हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जिन जिन इस्तेमालु कई पंहिंजो फीडबैक ॾिनो, चाहे पॉजिटिव हुजे या नेगेटिव हुजे, उन्हनि जो बि थोरायतो. छाकाणि त उन्हनि जी फीडबैक ताईं जेको आहिनि असांजा उहे लिसनर जेके इस्तेमालु करणु चाहिनि पिया उहे उनजो फ़ाइदो वठी सघनि पिया. वंस अगेन इन्हनि जो नंबर मां इन पॉइंट ऑफ व्यू सां शेयर कयां पियो अव्हांजे लाइ त तव्हां वधीक का बि मालूमात तव्हांखे घुरिजे त तव्हां हिननि खां वठी छॾिजो. ऐं हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम वारनि जी प्रोडक्ट जे बारे में तव्हांजो को बि फीडबैक हुजे त तव्हां हिननि जे नंबर ते ॾियो. स्पॉन्सरशिप बि बंदि पिया कनि, वरी नए सिरे सां असां नए प्रोग्राम में शुरू थींदासीं. इन हवाले सां बि फीडबैक हुजे त तव्हां हिन जे नंबर ते कॉल करे ॾेई सघो था. नंबर आहे 0336713547. नंबर वन सेकेंड मां रिपीट कयां पियो, 0336713547. इन नंबर ते तव्हां कॉल करे हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जे बारे में हिननि खां मालूमात वठी सघो था ऐं पुछी सघो था त तव्हांजे शहर में किथे अवेलेबल आहे ऐं वधीक इन बारे में इन्हनि खां फीडबैक बि वठी सघो था. हिकिड़ो वॉइस नोट रहिजी वियो आहे यार, इहो वेंदे वेंदे शामिल करे पोइ उनजा नाला अनाउंस कयां पियो ऐं कुरानदाज़ी करे पोइ अव्हां खां मोकिलियां पियो. ठीकु आहे, वॉइस नोट ॿुधो.
1: अस्सलाम वालेकुम, मीरपुर खास ॻोठ वली मोहम्मद रिंद खां इम्तियाज़ अली बंगलाणी. बबर भा, हेमे ब्यूटी क्रीम त असां लॻाईंदा हुआसीं, बहितरीन हुई चेहरे जी रौनक हुई. छा करियूं, अॼु तव्हांजो प्रोग्राम आख़िरी अलविदाई प्रोग्राम आहे. असांखे अफ़सोस इहो ई थिए थो, असां सत महीना प्रोग्राम ॿुधंदा रहियासीं. सत थींदा हुआ उन टाइम असां प्रोग्राम लाज़मी ॿुधणु शुरू कंदा. 8 बजे तव्हांजो प्रोग्राम ख़तमु करे पोइ कंहिं कमकार ते केॾे माण्हू इंसानु हलियो थो वञे, को शादी बि हूंदी, असां दावत हूंदी, तव्हांजो प्रोग्राम न छॾंदासीं, पूरा टाइम ते ॿुधी पोइ वेंदासीं. अफ़सोस इहो आहे हेमे ब्यूटी क्रीम वारनि खे असांजी गुज़ारिश आहे त महिरबानी करे हीउ प्रोग्राम अॻिते घटि मां घटि वधीक हलायो वञे. हेमे ब्यूटी क्रीम वारनि खे मूं वटि हेल्प नंबर आहे, उन ते बि कॉल कंदुसि. हेमे ब्यूटी क्रीम वारनि खे हीउ प्रोग्राम अॻिते वधाए छॾनि. अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि आहे, प्रोग्राम हिते ई ख़तमु कनि पिया. पवर भा, महिरबानी थिए तव्हांजो असांखे हिकिड़ो फ़ोन नंबर ॾेई छॾिजो हिन मुंहिंजे वाट्सअप नंबर ते. ॿियो मुंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे दोस्त काठड़ी खां ग़ुलाम रसूल मरे, उन्हनि खे मुंहिंजा सलाम हुजनि. विलेज वानव शाम यूसी विके असांखे डिस्ट्रिक्ट लाड़काणे खां असांजो क़ाबिल एतिराम अशरफ अली मिराली खे खोड़ सारा मुंहिंजा सलाम हुजनि. अशरफ अली मिराली जी मूं वॉइस बि ॿुधी आहे, हू मुंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे. महिरबानी करे बाबर शेख खे पंहिंजो नंबर कनेक्ट नंबर ॾे, जेको मां करे टाइम असां राबितो बि कंदासीं.
0: साईं अव्हां जी मोहबत यार, तव्हां ईअं अगरि कंदव न त पोइ मुंहिंजी दिलि ई न चईंदी वेंदी यार, त हिन जे लाइ बराए महिरबानी यार दिलि न लाहियो. इनशाला नए प्रोग्राम में शुरू पाण मिलंदासीं. हेल्पलाइन नंबर वारनि खे फीडबैक तव्हां ज़रूरु ॾियो, 0336713547. असांजो प्यारो लिसनर इम्तियाज़ अली बंगलाणी साहिबु यार, सत महीननि खां मूंसां हिन प्रोग्राम में गॾु आहे बाक़ाइदा तौर ते. यार मूंखे ॾाढी ख़ुशी आहे तव्हां जहिड़ा प्यारा प्यारा लिसनर्स मूंसां गॾु कनेक्ट थिया, पंहिंजी अटैचमेंट रही यार. अलहमदिल्ला, प्राउड ऑफ यू तव्हां लिसनर्स जेके आहिनि, मूंक़े फ़ख्रु आहे अव्हां ते. ठीकु आहे, सो कुरानदाज़ी करे पोइ अव्हांजे लाइ थोरी शायरी बि मूं ठाही, मूं यार वेंदे वेंदे अव्हां सां शेयर कंदुसि. पर कुरानदाज़ी करायां पियो, हिकिड़ो कॉलर शामिलु कयूं पिया, लकी कॉलर आहे यार जो, लेट्स सी केरु आहिनि. अस्सलामु अलैकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम.
0: साईं केर सां ॻाल्हायो?
2: बाबर साहब शिकायत.
0: अच्छा भयो साहब, वक़्त तमामु मुख़्तसिर आहे मूं वटि, मां कुरानदाज़ी करायां पियो तव्हां खां. ठीकु आहे, लाइन ते ई रहियो. सो दोस्तो, सेल्फीज़ मूं वटि अॼु आहिनि 14, राणो बिरोही, अशरफ मीरा, अशरफ अली मिराली साहब, हुबदार अली शेख साहब, सजन अली मिराली साहब, तनवीर साहब, गुलाम रसूल मरी साहब, जवार मोहम्मद बचल शंबाणी साहब, सवेरा मीरानी साहब, साहिबा इम्तियाज़ अली बंगलाणी साहब, नज़ीर मंगरियो साहब, ऐं ही केरु आहे, ग़ुलाम अली मजण साहब, ऐं अदी फराह साहिबा, सजाद बलोच साहब, ऐं अदा रब नवाज़ साहब. ठीकु आहे, टोटल सेल्फीज़ आहिनि मूं वटि 14. हाणे ॿुधायो, 14 नंबरनि मां कौन नंबर ऑन करणो आहे, खोलणो आहे, कोणो?
2: पंजो.
0: चलो अदा पंजे नंबर ते आए सजाद बलोच साहब ठीक है तांजी वरी मेहरबानी भयो साहब वक्त मुख्तसर आ तानिया वदी कचेरी के माता सेल्फी विनर ऑफ द वीक है सजाद बलोच साहब आई जिन जिन सेल्फी मोकली आने उन्हें सभी जो मां थोराए तो आया हाथ बदी ठीक है छाकाण तो उन्हें सुठी मोटे मुखे रिनी आए तैयार विंदे विंदे तमाम प्यारो कलाम आए ममताज आशारी जी आवाज में अज खिली मोकलायो सुबा लडे वेंदास शायरी ठाई थोड़ी वह चवं पे तुम शेयर क्या ठीक है तुम से रही रही मां भी शायर थी जी शायरी मुठाई तो रोईंदड़ के खिलाने असल जिंदगी है सभी के गड खी हलण ही असल बंदगी है अज एक सफर खत्म थो तो छा थो दोस्तों वे नए मोड़ ते मिलण ही तो जिंदगी है कि रहो वाह वाह अच्छा एक बो भी शेर मुठायो खूबसूरती थे हेमे ब्यूटी क्रीम जे मुतालिक जी खूबसूरती सिर्फ चेहरन जी ना है दिलन जी हुंदी है खूबसूरती सिर्फ चेहरन जी ना है दिलन जी हुंदी है हकीकी चमक त प्यार जी बोलन में हुंदी है सत महीना अवां जे चेहरन ते मुर्कियों विखेरियों सी सत महीना अवां जे चेहरन ते मुर्कियों विखेरियों सी या मोहब्बत ही असल सुह असांजी जिंदगी हुंदी आहे अच्छा ही आखिरी शेर है उनखां पोइ मां बस अवां खां अल्लाह हाफिज़ कंदुसि ठीक है अवां खे वंस अगेन मां माज़रत खुआयां का ॻाल्हि अगरि अवां खे इन सतनि महीननि जे सफ़र में बुरी लॻी हुजे अवां खे दुआउनि जी दरख़्वास्त बि कंदुसि इन शायरी सां गॾु एंड कंदुसि प्रोग्राम जी त सफ़र ते कंदे कंदे मंज़िल ते पहुची वियासीं अवां जी दिलनि में पंहिंजो घर करे वियासीं अलविदा चऊं था अॼु हिन ख़ूबसूरत मोड़ ते पर मोहब्बतन जो एक अणखुट दास्तान छड़े वयासी तो सदाई गड अल्लाह हाफिज़ ऐं जिंदगी बखैर।

0: अब आप KTN न्यूज
1: सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के साल 2024 जो समूरो रिकॉर्ड सील करे रिपोर्ट पेश कई वने केस जी बदी कबुदनी 21 मई ताई मुलतवी करे छदी।
2: छठे के झिरक रेलवे स्टेशन वेझो कोयले की खान में नव पोरत दबजी वया, चार फोत पंज जख्मी। कोयले की खान में कम कंदड़ नव पोरत भिक करण सबब दबजी वया, जैमा चार फोत थी वया, जिनजा लाश कढ़िया वया आहिन। फोतन में सवात वासी जियाउला नूर मोहम्मद, इरफानुल्ला ए सांगड़ वासी साईंदाद भट्टी शामिल।
0: किसानों के आलमी दिन पर सोना की जानिब से किसान

0: छा अवा जो चेहरो बेजान ऐं डल लॻे थो। हाणे वक़्तु आहे चमकण जो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सां कुदरती जुज़न सां तयार कयल, जेका ॾे कुदरती निखार, साफ़, नरम ऐं रोशन चेहरो। पहिरें ई इस्तेमाल में फ़र्क़ महसूस करियो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तव्हां बि चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
1: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 ऐं 02424601100।
0: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
3: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेहरापुर। असां वटि जॻह जूं ॾियारियूं, जॻह जा पावा ऐं पाइप, ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं 12 इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूदु आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम, 03014531456 ऐं तौकीर अहमद, 03616237093।
4: खुशखबरी, खुशखबरी, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी, वारनि ऐं नहनि, एलर्जी, कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 03005569

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई।
2: हाँ नहीं अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर।

0: मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटो से पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

वठनी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचणु शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियो ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 91 896

0: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

0: एटमी असां अग्राई लाइ न पर मुल्क जे दिफ़ा लाइ आहिनि। हक वारी जंग में दुश्मन पाक फ़ौज जो सेखारियल सबक समूरी जमात यादि रखंदो। काबीना इजलास खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एटमी प्रोग्राम शुरू कयो ऐं नवाज़ शरीफ़ मुकमल कयो। दुनिया पाकिस्तान खे ज़िमेवार एटमी ताक़त तौरु सुञाणे थी। हुकूमत अवाम खे रिलीफ फ़राहम करण लाइ समूरा वसीला कुतुब आणे रही आहे। हक वारी जंग में कामयाबी जो ॾिहाड़ो भरपूर जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो वियो।
1: है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर और वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट जो मेरे हदायात के मुताबिक 18th Amendment के बाद आपको पता है खासतौर पर फाइनेंशियल बिल पे और आईन तरमीम के बिल पे पार्टी के जो क्यादत है पार्टी के जो पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं उनको आईन ने बहुत इख्तियार दिया। मेरे इजाजत के बगैर मेरे वोट के बगैर मेरे पार्टी को इंस्ट्रक्शन दिए बगैर वो नामुमकिन है। अब बजट तो अगला महीना शुरू हुआ, अगर मुझसे अभी तक बात नहीं किया तो बड़ा मुश्किल है कि कोई आईनी तरमीम। लोग अपने अपने सियासत करते हैं, अभी तक मेरे साथ ना उठाया गया ना मैंने ये इंस्ट्रक्शन दिया है।
2: पीपल्स पार्टी की मदद का सवाल आईनी तरमीम ए बजट पास न थी सके। 28 तरमीम बाबत हुकूमत अजा तई राबो ना कर सुने की खबर ना है। फिलहाल तबसरो नो कर सका। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है तो को भी पार्लियामेंट्री पार्टी सरबराह की मर्जी का सवाल वॉन्ट नो कर सके। आईन पार्टी सरबराह के इन हवाले से घड़ो बाख्तियार है। पार्लियामेंट्री की रुकनियत भी खत्म थी सके थी। सूबन के तरमीमन जरिए हक आला अदालत में नुमाइंदगी दे रही है। दुनिया के अमन लाइ वजीर आजम ए फील्ड मार्शल घनी मेहनत कर रहा है। मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत तनकीद कर मुनासिब ना है। मुल्क मुश्किल के मोह दे रो है। अवाम से महंगाई जहा बम किरी रहा है। बजट में भी अवाम लाइ मुश्किल थी सन थी। हुकूमत सूरत हाल के सामू रखे फैसला कदी।
0: पीटीआई अठाई तरमीम बाबत हुकूमत का वाजह मौकिफ घुरे वरतो। बैरिस्टर गोहर चाहिए तो अठाई तरमीम बाबत हुकूमत अजा तई को भी ड्राफ्ट शेयर ना कर जैस तई तरमीम जो ड्राफ्ट सामू न इंदो कुछ चई न तो सकते। हुकूमत मौकिफ वाजह करे
2: इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ईरान से जंग दौरान गडल अरब अमारातों को गुझो दौरों कयो हो पर ही खबरू इदारे की दावा। इसराइली वजीर आजम की ऑफिस नेतन्याहू की यूएई के गुझे दौरे की तस्दीक कंदे है तो नेतन्याहू ईरान खिलाफ जंग दौरान गडल अरब अमारातों वो हो और यूएई की सदर मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से भी मुलाकात कई हुई। यूएई इसराइली वजीर आजम की गडल अरब अमारातों के गुझे दौरे की तरदीद कर छी। परदेही वजारत मूजिब इसराइल से लागापा इब्राहिमी मुआहदे तहत शफाफ ए ऐलानियल जिन में का भी गुझी मुलाकात ए राबता शामिल ना हैं। ईरान जंग दौरान इसराइली वजीर आजम गडल अरब अमारातों को दौरो ना है कयो।
3: हमजा बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो।
4: वो तो माली सेट कर देगा ना।
3: अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर नए शहर में सेट करूं, तुमसे चार गमले सेट नहीं हो रहे यार।
5: कहना था जो कुछ भी
6: पृथ्वी खिलावन रोड ऑन इट्स वे डाउन।
0: ईरान के केर भी शिकस्त नथो ॾेई सघे। तेहरान आज़ादी जे दिफ़ा लाइ मुकमल ताक़त सां विढ़ण लाइ तयार आहे। नई दिल्ली में वर्कर्स परडे॒ही वज़ीरनि जे इजलास खे ख़िताब कंदे ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास अराक्ची चयो आहे त ॿिनि सालनि दौरान ईरान खे अमरीका ऐं इसराइल जे ॿिनि वेशियाणनि हमलनि खे मुंहुं ॾियणो पियो आहे। यूएई बि ईरान ते हमलनि में सिधी रीति मुलविस हुयो। ईरानी क़ौम कंहिं धमकी या दबाउ आॾो न झुकंदी, मुहबत जो जवाब बि मुहबत सां ॾींदी।
7: And it was important because the Chinese side said they are not in favor of militarizing the Straits of Hormuz and they're not in favor of a tolling system.
8: GAFM network par KTN news.
9: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी। हैमेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक हैमेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी, हैमेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
10: खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़र रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300 3 85 569 0300 3 8 5 6 9।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तयाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।

0: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

असांजे जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट फुरड़ियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु, मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधणु, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-8051।

0: ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग। कंप्यूटराइज जैप

0: इस टेस्टिंग मशीन जरिए जे हमें मिले थी मोटरसाइकिल थी कार कर देगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 03 20 18 00 003।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 03013803843।
4: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज जीए एफएम 94।

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो, हाणे वक्त आहे चमकण जो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो। पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, तहां भी चमकायो पहजो चेहरो, जीए हुजे हीरो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर ATN न्यूज़।
1: मैंने इजाजत के बजाय, मैंने वोट के बजाय मेरा महीना शुरू हुआ। अगर मुझसे अभी तक बात नहीं किया गया तो बड़ा मुश्किल है कि कोई आईनी तरमीम। ये लोग अपने अपने सियासत करते हैं। अभी तक मेरे साथ ना उठाया गया, ना मैंने ये इंस्ट्रक्शन दिया है।
2: पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद का सवाल आईनी तरमीम ए बजट पास न थी थी सके। 28 तरमीम बाबत हुकूमत अजा तई राबो ना कर सुने की खबर ना है। फिलहाल अफसरो न तो कर सका। KTN न्यूज के रिपोर्टर असद शर के सवाल जो जवाब डींदे पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी सरबराह की मर्जी का सवाल वोट न तो कर सके। आईन पार्टी सरबराह के इन हवाले से घणो बाख्तियार है। पार्लियामेंट्री की रुकनियत भी खत्म थी सके थी। सूबन के तरमीम जरिए हक या आला अदालत में नुमाइंदगी डेराई है। दुनिया के अमुन लाए वजीर आजम में फील्ड मार्शल घनी मेहनत कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत तनकीद कर मुनासिब ना है। मुल्क मुश्किल के मोह दे रो है। बजट में भी अवाम लाए मुश्किल थी सकन थी। हुकूमत सूरत हाल के दिसंदे फैसला कंदी।
3: तरमीम आएगी जिसमें हमें एजुकेशन हेल्थ और बाकी जो चीजें हैं खासतौर पर VISP सूबों को वापस जाएगा और KPK का भी यही मुतालबा रहा है माजी में कि VISP सूबों को लिया जाए। तो उसके आपका क्या लगे
4: एक तो आई डोंट नो कौन सा उपाधि वजीर का हम जिक्र कर रहे हो
5: मीडिया से गाल बोल दौरान गलण ते बिलावल भुट्टो जरदारी पारा शाजिया मरिए ते कावड़ जो इजहार गलण का भी रोके छोड़ो। VISP बाबत KTN न्यूज के सवाल ते बिलावल भुट्टो जरदारी जवाब दे रहे हो तो शाजिया मरी जवाब दींदे खियल दास कोहिस्तानी अड़ी गाल कई है। बिलावल भुट्टो जरदारी विच में गलण ते शाजिया मरी मथा कावड़ जाहिर कर मुंह अवा का ना पुछो शाजिया मरी जवाब दिनों तर मां बुधा रही हुस। बिलावल भुट्टो जरदारी शाजिया मरी के मेहरबानी चई जवाब पूरा किया।

0: We should be partners, not rivals. We should help each other succeed and prosper together.
1: Thank you again, President Xi, for this beautiful welcome. And tonight it is my honor to extend an invitation to you and Madam Peng.
2: सरकार में फ़ायदो ऐं चिंताण सां नुक़सान थींदो आहे. चीनी सदर शी जिनपिंग अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खे मुख़ालिफ़ बदिरां भाईवार थियण जो मशवरो ॾेई छॾियो. सदर डोनाल्ड ट्रंप खे ॾिनल आजियाणे खे ख़िताब कंदे चीनी सदर चयो त अमरीका ऐं चीन जो तालुक दुनिया में सभिनी खां अहम आहे. ॿई मुल्क गॾिजी तरक़ी करे सघनि था. अमरीका खे ॿीहर अज़ीम बणाइण चीन जी तरक़ीअ सां भेट रखे थो. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त चीन में शानदार आदर भाव कयो वियो. ट्रंप चीनी सदर ऐं संदसि वनीअ खे अमरीकी दौरे जी बि दावत ॾेई छॾी.

0: एटमी असासा आग्राही लाइन पर मुल्क के दिफा लाया है हकवारी जंग में दुश्मन पाक फौजों से खरल सबक समूरी जमार याद रखो काबीना इजलास के खिताब कहे वजी अजम शहबाज शरीफ चाहे तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो एटमी प्रोग्राम शुरू किया नवाज शरीफ मुकम्मल कर दुनिया पाकिस्तान के जिम्मेवार एटमी ताकत तौर सुे थी हुकूमत अवाम के रिलीफ फराहम करने समूरा वसीला कुतुब आने रही है हकवारी जंग में कामयाबी जो दिहाड़ो भरपूर जोश ए जज्बे से मल्हाय वो
1: पीटीआई 28 तरमीम बाबत हुकूमत का वाज मौकफ घुरी वरतो बैरिस्टर

0: जीतने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स एंड जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94